देवकी पंडित की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना था फ्रॉम द मूवी साज। और जून की गर्मी में आम तो देखिए अभी बाजार में तो बहुत आए हुए हैं और खा भी रहे हैं लोग, और पूरा बाजार जो है वो आमों से सजा हुआ है। और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में आमों की बड़ी प्रशंसा की थी, और यहाँ तक कि मिर्जा गालिब भी ना आम खाने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने आम पर एक फारसी में प्रसिद्ध मसनवी यानी आम की तारीफ दर सिफत अबाह में लिखा है कि आम में बस दो खूबियाँ होनी चाहिए, एक तो वो बहुत मीठे हों और दूसरा बहुत सारे हों। तो गर्मी के फलों और शरबतों का आप लुत्फ लीजिए। बाकी अगले घंटे सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे अर्पण बबीता शर्मा के साथ, और इस गाने के साथ ही मुझे यानी पंकज को दीजिए बहुत सुहानी से अनुमति। दोबारा जल्दी मिलूंगा, सुनते रहिए 24 घंटे हर दिन आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और आम जैसे मीठे मीठे गानों का मजा लीजिए। नमस्ते।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून 2026। सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है और आइए आज हम आपको बता दें आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की आज रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण, जिसमें बबीता शर्मा आपके साथ होंगे। सुबह 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान बाल कांड भाग 80। सुबह 7:10 पर बबीता शर्मा के साथ आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। म्यूजिकल दिल लगी, इस कार्यक्रम को सुबह 8:45 पर बबीता शर्मा के साथ आप सुन पाएंगे। सुबह 9:10 पर इसी कार्यक्रम को म्यूजिकल दिल लगी को आप सुबह 9:10 पर नाज शेख के साथ सुन पाएंगे। सुबह 10:30 का समय रहेगा रिक्वेस्ट बेस्ड कार्यक्रम का दिल का मेल बॉक्स, नाज शेख इसमें आपके साथ रहेंगी। सुबह 11:10 पर आप सुनेंगे तस्वीर कार्यक्रम, जिसमें आज आप लद्दाख पर आप जानकारी सुनेंगे। दोपहर 12:10 पर महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे, जिसमें आज कई विषय होंगे। 90 सालों का हम सफर आकाशवाणी फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत होगी, साथ में लू से बचाव, रखे सेहत का ध्यान, योग का महत्व और अन्य विषयों पर आप जानकारी सुन पाएंगे गीत और संगीत के साथ। इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी शबनम। दोपहर 1:10 पर शबनम के साथ आप सुनेंगे कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज की अभिनेत्री हैं सारिका। दोपहर 2:30 का समय रहेगा कार्यक्रम उन्नत किसान का, इस कार्यक्रम में आज विशेषज्ञ होंगे राज सिंह अध्यक्ष सदस्य विज्ञान संभाग, विषय रहेगा स्मार्ट कृषि नवाचार खेती में डिजिटल क्रांति, इस कार्यक्रम की संचालक होंगी शबनम। दोपहर 3:10 पर रूमी मलिक आपके लिए लेकर आएंगे रिक्वेस्ट।

डे शो मन भावन। दोपहर 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम AIR एट 19 के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग। इस कार्यक्रम में रूमी मलिक आपके साथ होंगी और अतिथि रहेंगे डॉक्टर ऋतु राजपूत, पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी। शाम 4:10 पर रूमी मलिक के साथ आप सुनेंगे फिल्मी सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम। शाम 4:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम परिक्रमा। शाम 5:10 पर रूमी मलिक आपके साथ होंगी कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। इस कार्यक्रम में आप 90s के एरा के गाने भी सुन सकते हैं। रूपा धवन आपके लिए लेकर आएंगी शाम 6:10 पर कार्यक्रम सदाबहार गीत, जिसमें आप अपनी पसंद के गीत गाने सुनेंगे और साथ ही साथ दिल्ली शहर की जानकारी और मौसम की जानकारी और अन्य जानकारियों का आप ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। शाम 7:10 पर रूपा धवन आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम स्पेशल बायलिंगुअल प्रोग्राम्स सीरीज 12 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका विषय रहेगा मध्यम वर्ग कल्याण। तो ये थी आज आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कुछ रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a four-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit. The discussions will be focused on exploring avenues of cooperation in the areas of trade, investment, energy, renewable energy, healthcare, and pharmaceutical. External Affairs Ministry said that the Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. It said that the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. Senior Congress leader D.K. Shivakumar will be sworn in as the Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavar Chand Gehlot will administer him the oath of office and secrecy at Lok Bhavan in Bengaluru at 4 p.m. Mr. Shivakumar's appointment comes days after Mr. Siddaramaiah stepped down as Chief Minister, paving the way for his deputy to take over the top post. The development marks the culmination of a prolonged power tussle within the Karnataka Congress, with Mr. Shivakumar long seen as a contender for the top post since the party's victory in the 2023 assembly polls. Meanwhile, Congress has appointed senior Karnataka leader Siddaramaiah to its highest decision-making body, the Congress Working Committee CWC. The appointment is being seen as a significant organizational decision by the party leadership as it seeks to ensure stability and coordination within its Karnataka unit during a key political transition. West Bengal government will launch a major social welfare initiative, Annapurna Yojana, today. Chief Minister Subhendu Adhikari will formally inaugurate the scheme. The launch will be a massive synchronized event spanning the entire state. While the Chief Minister leads the central inauguration, beneficiaries of the Annapurna Yojana will participate virtually across all blocks, municipalities and municipal corporations. To ensure local participation, MLAs have been invited to attend the localized events, and the Chief Minister's main program will be broadcast via video conferencing directly to all block and municipal headquarters. Bangladesh's Foreign Minister Khalilur

बुधवार की इस सुहानी सुबह में आइए अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं अर्पण के जरिए। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज साथ हूं मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

प्रशंसा परक और उत्साहवर्धक शब्द बोलकर यदि किसी में नवजीवन संचार किया जा सके तो निसंदेह ये सहायता बड़े से बड़े धन सहयोग की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान सिद्ध हो सकती है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

वक्त हुआ है 6:27 और 21 सेकंड। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को लाया नहीं जा सकता, मगर हौसले और विश्वास से अब आने वाले हर पल को खूबसूरत जरूर बनाया जा सकता है।

विचारों को पढ़कर छोड़ देने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। विचार तभी बदलाव लाते हैं जब विचारों को जीवन में उतारा जाता है।

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं।

0: पञ्चायत्येभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पञ्चायत् सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां चतुस्त्रिंशत् ग्राम पञ्चायत्तेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पञ्चायत् सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च अष्ट पञ्चायत्तेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयर्थ विभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु, केरल माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामी दिवसद्वय पर्यन्तं हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली छत्तीसगढ़ झारखंड गुजरात गोवा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य तडितपातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडा वार्तासु, महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीय अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉक्टर खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को

0: खुशी एक महक की तरह होती है। जब तक हम स्वयं नहीं महकेंगे, दूसरों को कैसे महका सकते हैं। इसलिए खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात। और आइए अब सुनते हैं बातों बातों में फिल्म का ये गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: उठे सबके कंधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। इजाजत दीजिए बबीता को और आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: मतभेद बारिश के समान होने चाहिए जो बरसकर समाप्त हो जाएं, लेकिन प्रेम और विश्वास हवा के समान होना चाहिए जो दिखाई भले ना दे लेकिन हमेशा महसूस किया जा सके और आपके साथ रहे। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस ओजपूर्ण प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड हे देयर लिसनर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। राइज एंड शाइन एंड गेट सेट फॉर अनदर इंटरेस्टिंग एडिशन ऑफ आज सवेरे व्हिच इज अबाउट टू बिगिन फ्रॉम आवर स्टूडियोज। मुकेश, लेट अस स्टार्ट विद सम न्यूज़ हेडलाइंस।
0: जी बिल्कुल। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का भी वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। विदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आधारित आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
1: The center has signed memoranda of understanding MOUs with 4 states under the Jal Jeevan Mission 2.0 to enhance safe drinking water supply across rural India. The agreement has been signed with Arunachal Pradesh, Jharkhand, Tamil Nadu, Nagaland and the Union Territory of Puducherry. The Minister of Jal Shakti said the reform-linked MOU promotes a Gram Panchayat-led, service-based and community-centered approach to rural water governance. The initiative aligned with the objectives of Jal Jeevan Mission 2.0 aims to ensure that every rural household has access to quality drinking water supply in adequate quantity on a regular basis through strengthened community participation.
0: और श्रोताओं, भारतीय दर्शन में अतिथि देवो भव की सद्भावना को अंगीकार करते हुए जैसे कि भारत में विदेशी राजनयिकों का आना जारी है, इसी कड़ी में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 5 दिन की भारत की यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।
1: Senior Congress leader D.K. Shivakumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavarchand Gehlot will administer the oath of office in secrecy to Mr. Shivakumar and members of new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru at 4 p.m. Mr. Shivakumar's appointment comes days after Mr. Siddaramaiah stepped down as Chief Minister, paving the way for his deputy to take over the top post. The development marks the culmination of a prolonged power tussle within the Karnataka Congress, with Mr. Shivakumar long seen as the contender for the top post since the party's victory in the 2023 assembly polls.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित

0: तो बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित है और संविधान के रूप से गलत है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या वो चिकित्सा कारणों से समय से पहले सेवानिवृत्त होता है तो सरकार परिवार के किसी सदस्य को उसके स्थान पर नौकरी देती है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी को शामिल नहीं किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एक महिला द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था जो एक मृतक व्यापारी की विवाहित बेटी है।
1: The Department of Higher Education has invited applications for the Prime Minister Research Chair PMRC Scheme 2026. The flagship national initiative aims to connect global Indian talent with India's scientific and innovation future. The scheme will link global Indian talent with the country's rapidly expanding research, development, innovation and technology ecosystem across 13 thematic areas of national priority, including advanced computing, semiconductors and cyber security. Detailed guidelines, eligibility criteria and application procedures are available on the PMRC portal.
0: और श्रोताओं, सरकार ने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
1: Indian nationals will no longer require an airport transit visa when travelling to a third country through German airports beginning today. German Embassy in India announced that the exemption will simplify travel for Indian citizens transiting through Germany on their way to other international destinations. The embassy described the decision as a reflection of the growing partnership between the two countries. It said the move underlines the German government's commitment to deepening ties between the two countries, facilitating the movement of people. The move is expected to benefit thousands of Indian travelers, including students, professionals, business travelers and tourists who use German airports as transit hubs for destinations across Europe, North America and other regions.
0: और अब एक खेल से जुड़ी खबर। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। एलिस कैप्सी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। और अब रुक करते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों की खबरों का। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि 6 मई से राजधानी दिल्ली में संचालित मोबाइल हीट रिलीफ यूनिटों के माध्यम से अब तक 4,00,000 से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस दौरान 1,00,000 लीटर से अधिक पेयजल वितरित किया गया है। इसके तहत लोगों को गर्मी से राहत के लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों को तेज धूप से बचाने के लिए मेट्रो स्टेशनों जैसे नांगलोई, रोहिणी, पीरागढ़ी और प्रमुख बाजारों में अस्थायी शेड स्थापित किए जा रहे हैं। मध्य जिले में इन शेडों के माध्यम से अब तक 5,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है। वहीं पश्चिमी जिले की अगर बात की जाए तो 920 लोगों को इस सुविधा का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे अत्यधिक गर्मी के समय में अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। ORS के घोल का सेवन करें और हीट वेव से बचाव संबंधी सभी सावधानियों का पालन करें। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने राजधानी में पानी से संबंधित समस्याओं के निपटान के लिए जल वितरण व्यवस्था में व्यापक सुधारों की शुरुआत की है। एक संवाददाता सम्मेलन में जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि ये सुधार जल के समान वितरण, पानी की कमी, पुरानी जल अवसंरचना के आधुनिकीकरण और शोधित जल के पुनः उपयोग को

0: बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। अगर बात की जाए मुंबई की, तो मुंबई के निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित वित्तीय मांगों को जल्द समाधान मिलने की संभावना है। इस संबंध में हुई बैठक में सातवें वेतन आयोग के तहत अप्रैल 2016 से लंबित बकाया राशि सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य में हजारों शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इन लंबित मुद्दों पर सरकार के अनुकूल निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। इसके अलावा बृहन्मुंबई नगर निगम अनाधिकृत 10 जून से अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त रेहड़ी पटरी वालों को QR कोड आधारित पहचान पत्र जारी करना शुरू करेगा। मुंबई में लगभग 10,000 लाइसेंस प्राप्त फेरी वाले हैं। शहर के प्रमुख इलाकों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए चलाए जा रहे नए अभियान के तहत निगम ने शहर भर में 20 ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां बहुत अधिक भीड़ भाड़ रहती है और जहां अनाधिकृत फेरी वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की जाएगी। अगर बात करें मुंबई से जुड़ी ही एक रेलवे संबंधी खबर का, तो पश्चिमी रेलवे ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के अंतर्गत मुंबई के गोरेगांव और बोरीवली के बीच हार्बर लाइन के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण विकास कार्यों हेतु 86 करोड़ रुपए से अधिक की निविदाएं जारी की हैं। इसमें मिट्टी का काम, बड़े और छोटे पुलों का निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, रिटेनिंग वॉल जैसे कार्य शामिल हैं। अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का राज्य में शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और अब रुक करते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का।
1: Yes, Mukesh, starting with news from Chennai, the Directorate of Private Schools has ordered all private nursery, primary matriculation, the CBSE and other board schools in the state must display their approved tuition fee details on their notice boards on or before June 5th. The schools must print and provide class-wise tuition fee details in student admission application forms. Instructions have been issued to inspect schools in their jurisdiction and ensure compliance and submit a report to the directorate before the 10th of this month. Photo evidence along with acknowledgement of compliance will be obtained from schools and maintained in the office records to show proof of implementation. Every school must strictly oblige to this, failing which a government notice will be issued to them. We have another news from Chennai. The Tamil Nadu Tourism Department is planning to develop iconic movie shooting locations across the state into visitor attractions. The initiative will feature photo galleries, screening of scenes filmed there, themed cafeterias and interpretative displays. The proposed film tourism circuit will complement existing heritage and cultural trials. Going to Bengaluru now, the city will face major traffic restrictions and tightened security today ahead of the swearing-in ceremony of Karnataka Chief Minister-designate D.K. Shivakumar at Lok Bhavan by today evening. Vehicular movement will be restricted on key roads between noon and 8 p.m., including Kabban Road, Dr. B.R. Ambedkar Road, Racecourse Road and Queens Road, with heavy congestion likely in surrounding areas. Traffic police have advised commuters to use alternative routes via Shivaji Nagar, Cunningham Road, Nruputanga Road and the Outer Ring Road. Parking will be prohibited on major roads and within Kabban Park, with towing enforced for violations. We have another one from Bengaluru now. Ahead of the monsoon, FECC Special Commissioner Sushma Godbole of the Forest, Environment and Climate Change, FECC, cell under the Greater Bengaluru Authority, has directed officials to complete all ongoing flood mitigation works in Bengaluru North within 1 month. During an inspection of flood-prone areas, including Tata Nagar, Hebbal Lake, Manyata Tech Park and Nagwada Lake, Godbole reviewed drainage and lake development projects and instructed officials to expedite pending works to prevent waterlogging and flooding during the rainy season. And now to Hyderabad news. The Election Commission of India is conducting a special vote.

0: chapter list revision exercise called Special Intensive Revision in Telangana. A review meeting was held in Hyderabad on Tuesday to coordinate the third phase of this process. Senior Election Commission officials led by Principal Secretary Avinash Kumar and Deputy Secretary Sanjay Kumar attended the meeting. State Chief Electoral Officer C. Sudarshan Reddy briefed officials on the assembly constituencies, appointed staff and support centres established for SIR. The Chief Electoral Officer said that 68.30% mapping of voters has been completed so far across the state. And Mukesh?
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में एक बार आपका फिर स्वागत और अभिनंदन। अब वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। इधर राजधानी दिल्ली में आज बारिश और आंधी आने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में दोपहर या शाम के समय बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और कोलकाता की अगर बात करें तो शहर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बिजली चमकने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम का हाल सुना रही हैं सुभद्रा।
0: यस, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ थंडरस्टॉर्म अकंपनीड विद लाइटनिंग। द मिनिमम टेंपरेचर वाज 29 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 39 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई बिकमिंग जनरली क्लाउडी टुवर्ड्स आफ्टरनून और इवनिंग और नाइट। द मिनिमम टेंपरेचर वाज 22 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस। Hyderabad is expected to have thunderstorm accompanied with lightning. The temperature will hover between a minimum of 27 degrees and a maximum of 38 degrees Celsius. And so friends, right now the roadways are choked with traffic. Yes, you know that also, right? Yeah, all over the globe, not just in our country, it's all over the globe. And the pollution level remains high, and besides, most of these vehicles run on petrol and diesel, and we are also running low on stocks. So why not make use of a bicycle that not only serves a purpose but gives us, you know, good health? And indeed a full body workout is achieved by pedaling just for just few miles.
1: जी।

0: Yes, friends, the United Nations General Assembly declared 3rd June as International World Bicycle Day to recognize the uniqueness, longevity and versatility of the bicycle. And this year's theme is Cycling for a Greener Future. This theme focuses on how cycling can help reduce pollution, promote healthier lifestyles, support sustainable cities and create a cleaner environment for future generations.
1: और श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में 40% लोग काम पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं?
0: Yes, of course.
1: ये संख्या विश्व में सर्वाधिक है। 12 जून 1817 को जर्मनी के मैनहेम में बैरन कार्ल वॉन ड्रेस ने दुनिया की पहली साइकिल पेश की थी। ये लकड़ी से बनी थी और इसमें पैडल, गियर या किसी प्रकार की कोई चेन नहीं थी। उन्होंने खुद को पहले एक पैर से और फिर दूसरे पैर से धकेला। उन्होंने इसे लाइफ मशीन यानी कि जर्मनी में चलने वाली मशीन कहा। और अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो आज़ादी के बाद से ही साइकिल देश में यातायात व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा रही है। ख़ासतौर पर 1960 से लेकर 1990 तक भारत में अधिकतर परिवारों के पास साइकिल ही थी। ये व्यक्तिगत यातायात का सबसे ताकतवर और किफ़ायती साधन रहा। और अगर हम बात करें कि साइकिल से जुड़ी मेमोरीज की, तो अपने आप में सभी के पास, आपके पास भी, हमारे पास भी साइकिल से जुड़ी कुछ यादें होंगी, जिन्हें हम ऐसे देख सकते हैं कि शायद हम में से कुछ लोग बचपन में अपने माता पिता या अपने चाचा या अपने और भी अग्रजों के साथ आगे की सीट पर साइकिल में जो छोटी वाली लगी होती थी उस पर बैठकर साइकिल की यात्रा करते थे और अपने बचपन को आनंदित महसूस करते थे।
0: यू कैन स्टिल बाय बाइसिकल एंड स्टार्ट, ओके, स्टार्ट का पेडलिंग फ्रॉम होम, ओके।
1: जी बिल्कुल।

0: ओके, नाउ लेट्स मूव टू सम हिस्ट्री नाउ।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, ये था सफर साइकिल का। अब बात करते हैं आज की तारीख, यानी 3 जून क्यों है अपने आप में खास। आज की तारीख को भारत के इतिहास और भूगोल को बदलने वाले दिन के तौर पर याद किया जाता है। वर्ष 1947 में आज ही की तारीख को बरतानिया हुकूमत से भारत के अंतिम वॉयसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे का ऐलान किया था। इस घटना को 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के तौर पर जाना जाता है।
0: 1818 Maratha wars between British and Maratha Confederacy in India ended. 1844 the last confirmed specimens of the great auk were killed in Iceland, leading to the species extinction.
1: और 1918 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ था।
0: And 1965 the first American spacewalk happened. Astronaut Edward H. White stepped out of the Gemini 4 spacecraft, completing the first ever spacewalk by an American. And 1985, the government of India implemented a 5-day work week for its central civil administrative offices.
1: और इससे पहले 1972 में देश के पहले आधुनिक युद्धक पोत नीलगिरी को देश को समर्पित किया गया था। 1994 की अगर बात करें तो भारत सहायता क्लब का नया नाम भारत सहायता मंच भी आज ही की तारीख को किया गया था।
0: So let's get to some personalities now, Mukesh. Starting with Muhammad Ali, the legendary boxer known as the greatest passed away this day in 2016. Of course, his legacy extends beyond the ring, as he was also a prominent social activist and the symbol of civil rights movement. And
1: श्रोताओं, आज भारत में दुग्ध क्रांति और जिसे श्वेत क्रांति कहा जाता है, उनके जनक वर्गीज कुरियन के साथ मिलकर इस महान विभूति ने देश में सहकारी दुग्ध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखी। इनका नाम है त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल। आज इनकी पुण्यतिथि है। वर्गीज कुरियन तथा त्रिभुवनदास पटेल ने मिलकर दूध के पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क तथा बच्चों के लिए मिल्क फूड का भारत में पहला संयंत्र स्थापित किया। ये दुनिया में ऐसा अनोखा प्लांट था जो भैंस के दूध को पाउडर में बदल सकता था, और इस तरह अमूल की स्थापना हुई। सामुदायिक नेतृत्व के लिए त्रिभुवनदास पटेल को वर्ष 1963 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। वर्ष 1964 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

भारत में लड़कियों के बाल विवाह की बड़ी चिंताजनक प्रथा थी। इन्होंने केंद्रीय असेंबली से इसे रोकने के लिए 1925 में एक बिल पेश किया, शारदा बिल के नाम से। ये प्रसिद्ध बिल सितंबर 1929 में पास हुआ और 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू किया गया। इस बिल को पास करने का श्रेय जाता है हरविलास शारदा को, आज उनकी जयंती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कुरीति को रोकने का काम उन्होंने ही किया था? आज भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरविलास शारदा की जयंती है। हरविलास शारदा का जन्म 3 जून 1867 को अजमेर राजस्थान में हुआ। बाल विवाह प्रथा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बहुचर्चित शारदा एक्ट उन्हीं के नाम पर था। हरविलास जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के सचिव के रूप में भी काम किया। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदू सुपीरियोरिटी है। इस ग्रंथ में उन्होंने सम्प्रमाण सिद्ध किया कि इतिहास काल में सभी क्षेत्रों में हिंदू सभ्यता अन्य देशों से बहुत आगे थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं महाराजा कुंभा, महाराजा सांगा, शंकराचार्य और दयानंद, और लाइफ ऑफ स्वामी श्रद्धानंद दयानंद सरस्वती। उन्हें राय बहादुर और दीवान बहादुर की पदवियों से भी अलंकृत किया गया।

0: अब समय उचला है आपसे अनुमति लेने का, तो कार्यक्रम आज सवेरे समाप्त करने की मुकेश और सुभद्रा को दीजिए इजाजत।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
6: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
5: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिव कुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिव कुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कर

0: करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगरपालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय

0: कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल, अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

0: of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi today. President Draupadi Murmu will address the inaugural session of the conclave. The event is being held as part of the ongoing Janjatiya Garima Utsav 2026. President Draupadi Murmu will virtually inaugurate the training fab established at the Center for Nanoscience and Engineering at the Indian Institute of Science, Bengaluru. She will also inaugurate 75 space labs established across Eklavya Model Residential Schools in different parts of the country. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards the welfare of the middle class. A report.
1: Over the past 12 years, the government has empowered India's middle class through wide-ranging reforms. Simplified taxation and stronger banking, insurance and pension systems have enhanced their financial security. Under the new tax regime, individuals earning up to 12 lakh rupees annually are paying zero tax. For the middle class, specifically, GST has delivered several tangible benefits by simplifying taxes and lowering everyday costs. The Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, launched in 2015, has transformed the lives of crores of people by providing them with secure housing. Out of the total 1 crore 25 lakh sanctioned houses, over 98 lakhs are completed or delivered to beneficiaries across the country so far. Talking to Akashwani News, Abhishek Kumar from Uttar Pradesh said the scheme is ensuring housing for the poor and bringing relief to those living in rented accommodation.
2: My name is Abhishek Kumar. I have been in Pradhan Mantri Awas Yojana for 2 years. After applying, I have been given a lottery draw through the Magan Avantit. After the Avantit, I have been collected. After the registration, I have कुछ समय में हो जाएगी, उसके बाद मेरे को मकान आवंटित हो जाएगा, रजिस्ट्री कब्जा हो जाएगा। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज एनेबल्ड 43.52 करोड़ हेल्थ कार्ड्स एक्सपेंडिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर प्रोटेक्शन व्हाइल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन एट 50-80% लोअर प्राइसेज थ्रू जन औषधि केंद्रास। टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, ब्रह्मदेव ऑफ बिहार सेड दैट द मेडिसिन्स एट दिस केंद्रास आर अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस देन मार्केट।
3: मेरा नाम ब्रह्मदेव मालाका, मैं बिहार से हूँ, मधेपुरा जिला से। लगभग एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवा मिलती है। डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदे, किस सलाह पर हम लोग चलते हैं, बराबर दवा लेते हैं। यही दवा यदि बाहर में लेना चाहते हैं तो महंगी दवा मिलती है। तो सरकार की एक संस्था है, इससे गरीब की समस्या हल होती है।
1: द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड इन 2015 हैज आल्सो इवॉल्वड इनटू अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट। अंडर द स्कीम 40 लाख करोड़ रुपीज ऑफ loans have been disbursed to the beneficiaries so far. As incomes rise and opportunities expand, India's middle class is actively driving the nation's growth, ambition and future prosperity. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
0: The government has decided to gradually phase out the wholesale price index and replace it with a comprehensive producer price index system. The decision was taken to modernize country's inflation and pricing data framework and align it with global best practices. The Commerce and Industry Ministry has said that the government has approved the revision of the base year of the wholesale price index from 2011-12 to 2022-23. Bangladesh's Foreign Minister Khalilur Rahman has been elected President of 81st Session of UN General Assembly. Dr. Rahman emerged victorious in a closely contested election held in UN General Assembly, garnering 99 votes against Cyprus Special Envoy for Multilateralism Andreas Kakouris, who got 91 votes. His one-year tenure as head of the Chief Deliberative, Policy-Making and Representative Organ of the United Nations will commence in September. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has congratulated Dr. Rahman on his election as UN General Assembly President. In a social media post, Dr. Jaishankar said that he is looking forward to working closely with Dr. Rahman to advance the shared priorities of India and Bangladesh and strengthen multilateral cooperation. Internationals will no longer require an airport transit visa when travelling to a third country through German airports beginning today. German Embassy in India announced that the exemption will simplify travel for Indian citizens transiting through Germany on their way to other international destinations. The embassy described the decision as a reflection of the growing partnership between the two countries. It said the move underlines the German government's commitment to deepening ties between the two countries, facilitating the movement of people. India has welcomed the operationalization by Germany of the announcement waiving requirement of transit visa for Indian nationals transiting through Germany exclusively by air. External Affairs Ministry said that the announcement was made after discussions between Prime Minister Narendra Modi and Chancellor of Germany Friedrich Merz during his visit to India in January this year. The ministry said that this new arrangement would further enhance people-to-people ties between India and Germany. On to sports. In women's cricket, England sailed to a 6-wicket win over India in the third and final T20 international to clinch the series 2-1 at the county ground Taunton in England last night. India felt confident after taking 3 early wickets, but a commanding partnership between Heather Knight and Alice Capsey helped England chase down 180 with ease. India set a target of 181 runs against England. In reply, England scored 184 for 4 in 18.3 overs. Earlier, England won the toss and opted to bowl. Indian women made 180 for 5 in 20 overs. Alice Capsey was declared player of the match as well as player of the series. In badminton, PV Sindhu advanced to the second round of the Indonesia Open after overcoming a tough challenge in the opening match, returning to the world's top 10 rankings for the first time since October 2023. Sindhu defeated Thailand's Busanan Ongbamrungpan in the first round of the prestigious BWF Super 1000 tournament in Jakarta. However, it was disappointment for India in men's singles as Lakshya Sen crashed out in the opening round after suffering a defeat. Today in men's singles, HS Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hongyang. In men's doubles, the Indian duo of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will begin their campaign against Malaysia's Kai King Hang and Arun Thai. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
4: Thank you, Shagun. All dailies lead with the centre's action in the wake of irregularities in CBSE exams. Hindustan Times opens with the headline, CBSE Chairman, Secretary shunted amid outcry, while the Tribune adds, Government forms panel to probe on-screen marking. Pioneer reports, CBSE re-evaluation portal faces new cybersecurity challenges. Indian Express on its editorial page writes, Girls rewrite G-script, campus must keep pace. For the first time, more than 10,000 girls have qualified for admission to premier engineering institutions, including IITs. This year, G witnessed a striking improvement that has pushed the number of successful females up by almost 89% since 2019. In international news, Asian Age mentions Israel PM calls off Beirut strike after heated call with Trump, while the Pioneer reports Trump slams Netanyahu over Lebanon offensive. Times of India informs El Nino is rapidly developing and is set to impact global temperature and rainfall patterns under the headline World Meteorological Organization's El Nino alert raises odds of severe impact on monsoon with 80% chance of onset during June-August period. And finally, under a piece titled Tigress Zenith gives birth to 4 cubs in Odisha Simlipal, the Hindu informs the translocation effort aimed at enhancing the genetic diversity of tigers in Odisha Simlipal Tiger Reserve has reserved major boosting, adding a proud chapter to Odisha's natural resources and wildlife conservation efforts. With that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, elected President of 81st Session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 International to seal 3-match series 2-1. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
5: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजर कर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैनल अक्वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। अब खबरें तफसील से। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान वो भारत वेनेजुएला के ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा बातचीत करेंगी। दोनों ममालिक तिजारत सरमायाकारी तवानाई काबिल तजदीद तवानाई हिफ्जान सेहत और दवा साजी समेत अहम शोबों में बाहमी तआवुन के इम्कानात का जायजा लेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के उमूर खारजा मईशत खजाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक वजरा पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी मोहतरमा रोड्रिग्स भी के हमरा भारत पहुंचेगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
6: भारत और वेनेजुएला के दरमियान खास तौर पर तवानाई और तजारत के शोबों में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस दौरे से दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तहकम होने और मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। वजीर आजम के साथ बातचीत के दौरान तवानाई की यकीनी फ्राहमी तजारत और सरमायाकारी दवा साजी हिफ्जान सेहत नकलो हमल और काबिल तजदीद तवानाई समेत बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वेनेजुएला का वफद तवानाई दवा साजी और ऑटोमोबाइल से मुतालिक शोबों से वाबस्ता इदारों का दौरा करेगा। इस दौरे का मकसद इश्तराक के मौके का जायजा लेना और भारत की तकनीकी और सनती सलाहियतों के बारे में अहम मालूमात हासिल करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
5: भारत की ब्रिक्स सदारत में आज ओडिशा के शहर पुरी में ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की पहली जाती तौर पर तकनीकी मीटिंग शुरू हो रही है। इस 3 रोजा मीटिंग में 11 ब्रिक्स और पार्टनर ममालिक के मंदूबीन पॉलिसी साज और आफात के बंदोबस्त के माहिरीन शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में आलमी खित्ते जनूब में आफात के ताल्लुक से लचकदारी को मुस्तहकम करने पायदार तरक्की को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। रियासत के गवर्नर थावरचंद गहलोत आज शाम 4 बजे बेंगलुरु में वाकई लोक भवन में जनाब शिवकुमार और नई काबीना के अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। इससे पहले जनाब सिद्धरमैया के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद जनाब शिवकुमार के लिए इस आला ओहदे के लिए रास्ता साफ हो गया था। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस में लंबे अरसे से इक्तदार के लिए जारी रस्साकशी भी खत्म हो गई। जनाब शिवकुमार को 2023 के असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत के वक्त से ही इस आला ओहदे के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। जुमेरात को जनाब सिद्धरमैया ने बेंगलुरु में वाकई अपनी रिहाइशगाह पर सुबह मुनक़िद होने वाली एक मीटिंग में अपनी काबीना के वज़रा को अपने इस्तीफे के ताल्लुक से बताया था और इस बात का इशारा दिया था कि कांग्रेस आला कमान की हिदायत के मुताबिक जनाब शिवकुमार वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। मगरबी बंगाल हुकूमत आज समाजी फलाह बहबूद की एक बड़ी पहल अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेगी। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी इस स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इस इफ्तिताही तकरीब में अन्नपूर्णा योजना के मुस्तफिदीन तमाम ब्लॉक्स, म्यूनसिपल्टियों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। मकामी

0: सतह पर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए अरकान असेंबली को मकामी सतह पर प्रोग्रामों में मदद किया गया है और वजीर आला का असल प्रोग्राम तमाम ब्लॉक और म्यूनसिपल हेडक्वार्टर्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बराह रास्त नशर किया जाएगा। वजीर आला के इफ्तिताही खिताब के फौरन बाद इजाजत नामे तकसीम किए जाएंगे। हर ब्लॉक म्यूनसिपल्टी और कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 100 मुंतखब मुस्तफिदीन बाकायदा इजाजत नामे हासिल करेंगे। पहले मरहले में आज से मुस्तफिदीन को 3,000 रुपये बराह रास्त उनके खातों में मिलने शुरू हो जाएंगे। नाबंदा में इफ्तिताही तकरीब 12:30 बजे मुनाकिद की जाएगी, जिसमें खवातीन, बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद से मुतालिक महकमे के वजीर अग्निमित्र पाल शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आपके लिए अहम शोबों में गुज़श्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खुसूसी फीचर लेकर आया है। आज हम मुतवस्सित तबके की बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 साल में हुकूमत ने वसी पैमाने पर इस्लाहात करके मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाया है। आसान टैक्स निज़ाम और मजबूत बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेंशन के निज़ाम की वजह से उनके माली तहफ्फुज में इजाफा हुआ है। नए टैक्स निज़ाम के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले अफराद हरगिज टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। खासतौर पर मुतवस्सित तबके के लिए जीएसटी निज़ाम ने टैक्सों को आसान बनाकर और रोज़मर्रा के अखराजात को कम करके 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने करोड़ों लोगों को महफूज मकानात फराहम करके उनकी जिंदगियों को बदल दिया है, जिससे कई ठोस फायदे हुए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि ये स्कीम गरीबों के लिए रिहाइश को यकीनी बना रही है और किराए के मकानात में रहने वालों के लिए राहत का बाइस बन रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 43.52 करोड़ हेल्थ कार्ड्स बनाए हैं, जिससे सेहत की देखभाल के तहफ्फुज़ तक रसाई में इजाफा हुआ है। जबकि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना स्कीम जन औषधि केंद्रों के जरिए 50% से 80% कम कीमतों पर मयारी जेनरिक अद्वियात फराहम कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर अद्वियात मार्केट के मुकाबले इंतहाई सस्ती कीमत पर दस्तयाब हैं।
3: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खोजें।
1: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। डॉक्टर रहमान को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के लिए कराए गए इंतखाब में कामयाबी हासिल हुई है। उन्हें 99 वोट मिले, जबकि इस कसीर मुल्क निज़ाम के लिए कुब्रुस के खसूसी सफीर एंड्रिस काकोरिस को 91 वोट मिले। अक्वामे मुत्तहिदा के आला मुज़ाकराती पॉलिसी साज और नुमाइंदगी करने वाले इदारे के सरबराह के तौर पर उनकी 1 साल की मुद्दत सितंबर में शुरू होगी। ये सदारत अलग अलग खित्तों के पास बारी बारी रहती है और इस मुकर्रर उसूल के मुताबिक 81वें सेशन के सदर को एशिया बहरुल काहिल ग्रुप से मुंतखब किया जाना था। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मुंतखबा सदर डॉक्टर रहमान ने कहा कि वो अपनी मुद्दत कार के दौरान इस इदारे का काम इंसानी हकूक पर खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए करेंगे और सभी रुकन मुल्कों को फ़ाल रखेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का सदर मुंतखब होने पर डॉक्टर रहमान को मुबारकबाद दी है। भारतीय शहरी जब जर्मन हवाई अड्डों से होकर किसी तीसरे मुल्क जाएंगे तो उन्हें आज से ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। भारत में जर्मन सिफारतखाने ने ऐलान किया है कि इस छूट से उन भारतीय शहरी

0: के सफर में सहूलत हो जाएगी जो जर्मनी के रास्ते किसी दूसरे मुल्क जाते हैं। भारत ने अपने शहरियों के लिए ट्रांजिट वीजा को खत्म करने के लिए जर्मनी के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा ने कहा कि यह ऐलान इस साल जनवरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दरमियान बातचीत के बाद किया गया है, जब जनाब फ्रेडरिक भारत के दौरे पर आए थे। वजारत ने कहा कि इस नए इंतजाम से दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को मजीद फरोग हासिल होगा। जम्मू कश्मीर में रियासती इंतखाबी कमीशन आज से आला सतह की एक दो रोजा मीटिंग मुनाकिद करेगा। ये मीटिंग जिला इंतखाबी अफसरान और दीगर शख्सियतों के साथ की जाएगी, जिसका मकसद मरकज के ज़ेर इंतजाम इस इलाके में पंचायत और जिला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रियासती इंतखाबी कमिश्नर शांत मनु इस मीटिंग की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और ब्लॉक तरक्याती कौंसिलों का कामकाज 9 जनवरी 2024 को रोक दिया गया था। बल्दियाती इदारों की मुद्दतकार अक्टूबर नवंबर 2023 और जिला तरक्याती कौंसिलों की मुद्दतकार 24 फरवरी 2026 को मुकम्मल हो गई थी। हुकूमत ने साल 2026 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यह बावकार अवार्ड सदर जमहूरिया की जानिब से ऐसे बच्चों को अता किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक खिदमत, माहौलियात, खेलकूद, आर्ट और कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हों। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तूफानी झक्कड़ की सूरत हाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने केरला और माहे में अगले 2 से 3 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कल तक अंडमान और निकोबार जजायर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश और शिमाल मशरकी खित्ते में गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। खवातीन क्रिकेट में कल रात टोरंटो में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल करके भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हेथर नाइट और एलिस कैप्सी की शानदार शराकत दारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से 180 रन का निशाना हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी को इस मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खवातीन ने 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 18.3 ओवर्स में 4 विकेट पर 184 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की छह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की हलफबरदारी से मुतल्लिक खबर को छह सुर्खी बनाया है। अखबार की सुर्खी है 5 नए जजों को हलफ दिलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 37 हुई। अखबार प्रताप की छह सुर्खी है मोदी सरकार ने CBSE चेयरमैन व सेक्रेटरी को ओहदे से हटाया, पेपर लीक मामले में कोताहियों की जांच कराएगी हुकूमत। इसी अखबार की एक और सुर्खी है दिल्ली में BJP सदर से नेपाल के वफद की मुलाकात। अखबारात की एक और अहम सुर्खी है भारत और जनूबी अफ्रीका ने दो तरफा रिश्तों को और मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। अखबार प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि मजबूत, खुशहाल और खुदकफील भारत की तामीर में ताउन दे कबायली नौजवान।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा DK शिव कुमार को आज सपहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा SJ शंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजर कर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म।

नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी, और आज साथ हूं मैं आपके बबीता।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं जयश्री अरोरा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो की लत मुझे बिल्कुल बचपन से पड़ी थी। मेरी माताजी रेडियो प्रेस सुनने की बहुत शौकीन थी। उसके बाद इत्तेफाक से मैं रेडियो आर्टिस्ट भी बन गई और प्रोग्राम किए, इतना कुछ सीखा। बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स निर्मला अग्रवाल, दीनानाथ जी, सत्येंद्र, शरद, शैलेंद्र जी, सुशील बैनर्जी, कमल दत्त, सुदर्शन जी, दानिश इकबाल, इन सब के साथ काम करके इतना कुछ सीखा। और जब टेलीविजन के लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ ये आकाशवाणी की देन है। तो आज इस उपलक्ष पर हम सब इतने खुश हैं, और तरक्की करें आकाशवाणी। और इस शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभ

8:54 आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए मार्केट में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ई मोबिलिटी क्षेत्र में भी इसकी मांग बढ़ी है। इसलिए आईआईटी दिल्ली के कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम यानी सीआईपी ने एडवांस प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी शुरू किया है। 6 महीने के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम 23 अगस्त से शुरू होकर 21 फरवरी 2027 तक चलेगा। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू किया जाएगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन भी करेंगी। इस सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। तीसरा और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वाली मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। लेकर हाजिर हूं म्यूजिकल दिल लगी, जहां ढेर सारी बातों के बीच एंजॉय करेंगे एक से बढ़कर एक सॉन्ग, तो कुल मिलाकर माहौल होगा एकदम म्यूजिकल। और साथ में होगा आज का सवाल भी, जिसका जवाब आप देंगे कहां और कैसे ये भी सुनते जाइए। आज का पहला गाना मैं आपको सुनाऊं उससे पहले FM गोल्ड AIR Delhi@gmail.com पर आप करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज। आप भेजेंगे 9868687533 पर। और फिर क्या करेंगे? झूम के नाचेंगे आप वहां और मैं यहां, क्योंकि सोना नहीं चांदी नहीं ना सही, लेकिन मैं और आप तो मिले हैं म्यूजिकल दिल्लगी में। तो लेट्स एंजॉय।

और अब चैन और सुकून जब मिल ही गया है तो फिर क्यों ना हो जाएं थोड़ा सा सीरियस, क्योंकि अब आने वाला है आपके लिए आज का सवाल। जी हाँ, आज आप मुझे बताएंगे कि तड़के सुबह आकाशवाणी पर बजने वाली मंगल ध्वनि में जो खूबसूरत शहनाई की धुन गूंजती है और जो एक तरह से आकाशवाणी की पहचान भी बन गई है, उस खूबसूरत और मशहूर धुन को किसने प्ले किया था। माने जो कुछ भी जानते हैं आप उस खूबसूरत धुन के बारे में सब कुछ लिख भेजिए fmgoldair@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप अगर खुला हुआ है फोन में तो कीजिए उसी का इस्तेमाल और जल्दी से भेज दीजिए वो नाम जो है आज के सवाल का सही जवाब। और हाँ, प्रोग्राम के एंड में अपना नाम सुने बिना कहीं मत जाइएगा, और अगर दिया किस्मत ने साथ और आपने सही वक्त पर मेरा फोन उठा लिया तो सीधे फोन लाइन पर भी हो जाएगी आपकी और हमारी बात। बाकी बातें होती रहेंगी आज के दिन यानी 3 जून के बारे में भी, और साथ में सुनते रहेंगे म्यूजिकल दिल लगी की प्लेलिस्ट में सजे एक से बढ़कर एक तराने जो मुझे यानी नाज को आपके लिए है बजाने।

अच्छा ये बताइए, आप में से किस किस ने साइकिल चलाई है? यकीनन सभी ने चलाई होगी, अभी ना सही पर बचपन में तो जरूर चलाई होगी। भाई मेरा हाल तो ये था कि जब तक मेरी खुद की अपनी साइकिल नहीं आ गई ना, तब तक बाकायदा बिजनेस डील करी है मैंने साइकिल चलाने के लिए। मतलब कि 1 रुपए के बदले कभी 2 तो कभी 3 चक्कर, जैसी डील पक्की हो जाए। भाई कमाल का क्रेज था तब साइकिल चलाने का, नहीं बल्कि दौड़ाने का यूं कहिए। ये बात अलग है कि कई बार अपने घुटनों पर चोटें भी खाई हैं, लेकिन मजाल है जो साइकिल चलाने का क्रेज जरा भी कम हुआ हो। पर अफसोस कि आज जब हमारे एनवायरनमेंट को साइकिल की बेहद जरूरत है, तब हमारा क्रेज साइकिल को लेकर खत्म होता जा रहा है। देखिए फायदे क्या क्या हैं और कितने हैं साइकिल चलाने के, ये हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो साइकिल की इस जरूरत को महसूस करने की, और आज का दिन यानी 3 जून इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि आज है वर्ल्ड बाइसिकल डे यानी विश्व साइकिल दिवस, जो दुनिया भर में साइकिल चलाने के अनगिनत फायदों को याद दिलाने और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से मनाया जाता है। और इस साल यानी 2026 में इस खास दिन की थीम है हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना, यानी साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। तो बात बस इतनी सी है जनाब कि साइकिल चलाना सरल है, किफायती है, भरोसेमंद है और हमारे पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के लिए तो बेस्टम बेस्ट है। तो थाम लीजिए मेरे साथ अपनी साइकिल का हैंडल और एंजॉय कीजिए ये अगला गाना।

अच्छा, एक छोटा सा कंफ्यूजन मुझे आपका दूर करना है कि सवाल मैंने ये पूछा है कि मंगल ध्वनि आकाशवाणी की जो सुबह सुबह आप सुनते हैं उसमें शहनाई का स्वर किसका है, ये नहीं पूछा कि उस धुन को कंपोज किसने किया या वायलिन किसने बजाया। ये सारी जानकारी जो आप भेज रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आज के सवाल का जवाब नहीं है। दोहरा रही हूँ आपके लिए आज का सवाल, आपको बताना है कि आकाशवाणी में सुबह सुबह बजने वाली मंगल ध्वनि में शहनाई जो कि एक वाद्य यंत्र है, उसका स्वर किसका है, किसने उस वाद्य यंत्र को प्ले किया है, ये आपको बताना है।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। म्यूजिकल दिलगी में लगी है सुपर हिट सॉन्ग्स की झड़ी, जिसे एंजॉय कर रहे हैं आप मेरे यानी नाज के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर। और हम एंजॉय करें अगला तड़कता फड़कता गाना। उससे पहले मुझे आपको है कुछ बताना। देखिए, गर्मी जबरदस्त पड़ चुकी है, अभी फिलहाल राहत है थोड़ी सी और आगे जबरदस्त पड़ने भी वाली है, तो ऐसे में पानी की जरूरत और इसकी अहमियत हम सबको समझनी होगी, है ना? क्योंकि चौतरफा डेवलपमेंट के बावजूद अब भी हमारे देश में ऐसे कई इलाके हैं जहां पानी की किल्लत है। देश के सात प्रमुख राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारत सरकार के सौजन्य से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित अटल भूजल योजना हमें यही सिखाती है कि कैसे पानी का सही इस्तेमाल करें और पानी का सही प्रबंधन कर उसे बचाए भी। क्योंकि देखिए, बात सीधी सी है कि भले ही हमारी पृथ्वी 71% नीली है यानी पानी से घिरी है, लेकिन हमारे पीने के लिए उसमें सिर्फ 1.69 यानी 1.69%, मतलब अब 2% भी पूरा नहीं है, ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल की यहाँ पर बात हो रही है, जिसे हम पीने लायक मीठा पानी भी कहते हैं और जिसका लेवल लगातार कम होता जा रहा है। अटल भूजल योजना के तहत पहले तो अलग अलग इलाकों का वाटर बजट तय किया जाता है और फिर उसी आधार पर जल सुरक्षा योजना तैयार की जाती है, मतलब कि कैसे पानी की आपूर्ति को बढ़ाया जाए।

जाए और साथ ही साथ पानी की मांग को भी नियंत्रित किया जाए। कुछ समझदारी भरे तरीकों को अपनाकर, जैसे ब्रश कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं या फिर बर्तन धो रहे हैं, तब भी पानी लगातार ना बहाएं। नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। वॉशिंग मशीन में थोड़े थोड़े कपड़ों की जगह उसकी क्षमता के अनुसार कपड़े धोएं। और घर में अगर कहीं पानी की लीकेज है तो उसे बिना देरी तुरंत ठीक करवाएं। आरओ से निकलने वाले रिजेक्टेड वाटर को इकट्ठा करें, घर के दूसरे कामों में इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी, जब भी बारिश हो तो उसे थोड़ा सा जतन करके वापस उसके पानी को जमीन तक पहुंचाएं, यानी वाटर साइकिल को अपनी धुरी पर घूमने दें, उसमें रुकावट ना बने। और क्या करें, साथ में एंजॉय करें ये अगला ट्रैक भी।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

जून है आज की तारीख और क्यों है ये खास, चलिए इस पर लौटते हैं अब। तो जनाब साल 1947 क्यों था खास, ये तो आप सब जानते ही हैं। ब्रिटिश राज से मिली थी हमें आजादी 15 अगस्त को, लेकिन उससे पहले यानी 3 जून को 1947 में ही क्या हुआ था ये जानते हैं आप? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूं। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने आज ही के दिन साल 1947 में भारत के बंटवारे का ऐलान किया था, जो भारत के इतिहास और उसके भूगोल को भी बदलने वाला था। यही वजह है कि भारत के बंटवारे की इस घटना को 3 जून योजना या फिर माउंटबेटन योजना के तौर पर भी याद रखा जाता है, जिसके तहत भारत के विभाजन के साथ साथ भारत और पाकिस्तान को सत्ता के हस्तांतरण का विवरण कैसे किया जाए ये तय किया गया था। 2 जून 1947 को कई दौर की बातचीत के बाद अगले दिन यानी 3 जून 1947 को माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सिख समुदाय के प्रतिनिधि बलदेव सिंह के साथ ऑल इंडिया रेडियो पहुंचे और फिर यहीं से इस योजना की सिलसिलेवार जानकारी देश को मिली। बातों का सिलसिला बिल्कुल इसी तरह रहेगा आगे भी जारी, पर उससे पहले आ गई है अगला ट्रैक सुनने और उसे एंजॉय करने की बारी।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: म्यूजिकल दिल्लगी का जारी है सफर, जहां आपकी हम सफर हूं मैं यानी नाज। और अब चूंकि घड़ी ने बढ़ा दी है अपनी गति, तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल का सही जवाब और उससे जुड़ी कुछ और जानकारी भी, जो आप सबने इतनी मेहनत से ढूंढी है और हमें लिखकर भेजी भी है। तो जनाब बिल्कुल सही हैं आप। भारत रत्न से सम्मानित दुनिया भर में मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के हैं वो सुर, जिन्हें आप आकाशवाणी पर सुबह सुबह बजने वाली मंगल ध्वनि में सुनते हैं। एक खास रिकॉर्डिंग के जरिए उस्ताद जी ने साल 1957 में HMV के माध्यम से एक खास LP यानी लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड तैयार किया था, जिसमें सुबह और शाम के समय गाए जाने वाले अलग अलग 7 रागों को 3-3 मिनट की अवधि के लिए बजाया गया और फिर कुल 14 रागों का यही संग्रह आगे चलकर आकाशवाणी के साथ साथ हम सब के दिन की शुरुआत बन गई। और यही वजह रही कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक भी कहा गया। और चलिए अब जान लेते हैं वो सभी नाम जिन्होंने लिखकर भेजा बिल्कुल यही और सही जवाब आज के सवाल का। तो भाई सबसे पहला जो जवाब आ जाया वो आया राजेश कुमार जी का, जिनसे अभी हम कुछ ही देर में फोन लाइन पर बातें करेंगे। वो कर रहे हैं थोड़ा सा इंतजार। उससे पहले डॉक्टर मंजुषा उग्रसेन यादव नई दिल्ली से, नवीन भाटिया मोतीनगर नई दिल्ली से ही, आशीष गायकर मुंबई से, कृष्ण कुमार गुप्ता भटीपुरा महोबा UP से, अनु बड़जात्या मुंबई से, अशोक कुमार शर्मा अलवर राजस्थान से, हेमा गुरुग्राम से, काव्या कन्नालवर महाराष्ट्र से, संतोष सक्सेना मुंबई से, अंशु भार्गव, प्रकाश गोगिया, इन्होंने भी दिया बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आज के सवाल का। और देखिए राजा जी ने भी भेज दिया आपसे कुछ ही देर पहले बिल्कुल सही जवाब। जयप्रकाश दुबे साहब ने भी भेज दिया और इसके साथ ही महेश अग्रवाल जी ने भी भेज दिया आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब। और भी कई जवाब आए हैं, सुदर्शन मुखी जी हैं जिनमें शामिल, अमरजीत सिंह शामिल हैं, देवदत्त परसौलिया शामिल हैं, और कौन शामिल है, मनोहर लाल गांधी विजयनगर गाजियाबाद से। और अब देखिए ज्यादा इंतजार मैं राजेश जी को नहीं करवा सकती हूँ, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया
0: जी। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कैसे दिन की शुरुआत करते हैं, आकाशवाणी उसमें कितना हिस्सेदार रहता है?
1: मैं 3 चीजें करता हूँ
0: जी।
1: सबसे पहले रेडियो खोलता हूँ, फिर मोबाइल चार्ज के लगाता हूँ।
0: अच्छा।
1: फिर ये हेडफोन चार्ज के लगाता हूँ।
0: वाह क्या बात है सर। कहीं कोई कमी ना रह जाए, है ना
1: जी। और मेरे को शुरू से ही आदत है समाचार सुनने की
0: जी।
1: अच्छा। मैं रेडियो पे बहुत विश्वास करता हूँ, इसी का ही समाचार सुनता आया हूँ बचपन से।
0: अच्छा, तो सिर्फ समाचार सुनते हैं या गानों के भी शौकीन है और हमें भी सुनना पसंद करते हैं?
1: गाने वाले फिल्में वगैरह मतलब इतना शौक नहीं रहा, पहले था शुरू में, अब
0: अच्छा
1: नहीं है।
0: तो मतलब
1: लेकिन 10 बजे तक मैं सुनता हूँ, 10 बजे तक मैं रेडियो सुनता हूँ।
0: अच्छा ओके।
1: और एक्सरसाइज भी करता रहता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी दिन की शुरुआत आप करते हैं, सभी को इसी तरह से दिन की शुरुआत करनी चाहिए सर। और बताइए कुछ अपने बारे में कि आकाशवाणी सुनकर। और
1: मैं आकाशवाणी रेडियो बचपन से सुनता था
0: जी,
1: 75 से लगा लीजिए मैं लगातार सुनता हूँ।
0: अच्छा।
1: हमारे घर में रेडियो आया था तो पिताजी हमारे बरामदे में लगा के सुनते थे हम सारे शाम को इकट्ठे रात को।
0: क्या बात।
1: मैं 11 बजे तक सुनता था।
0: अरे वाह।
1: समाचार सुनने के बाद फिर मैं सोने जाता था, उसी दौरान मैं पढ़ता भी रहता था।
0: वाह सर,
1: पढ़ाई भी करती रहती थी।
0: बिल्कुल अप टू डेट रहते होंगे आप। तो गानों के आप बहुत ज्यादा शौकीन नहीं है आपने बताया, लेकिन फिर भी कोई तो जी।
1: नहीं गानों के शौकीन है, पुराने गानों के बहुत शौकीन हूँ मैं।
0: अच्छा।
1: पुराने गाने या फिर बोल इसीलिए चुना है उसमें पुराने ही गाने आते हैं।
0: तो बताइए फिर कोई एक ऐसा गाना जिसे आप बहुत पसंद करते हो। जिसे हम आपके
1: हाँ, मैं क्या मेरे मेरे जितने भी जानने वाले हैं सभी को पता है कि मेरे को एक ही गाना पसंद है, वक्त फिल्म का है।
0: अच्छा,
1: मेरी जोहर जबी।
0: अरे वाह सर, बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है, तो सुनेंगे हम मन्ना डे साहब की आवाज में जरूर कुछ ही पलों में, लेकिन उससे पहले आपकी आवाज में सुनना तो बनता है सर, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए।
1: नहीं मैडम, मुझे आता नहीं है
0: सर, थोड़ा सा, दो लाइनें तो बनती है सर। जी
1: मेरी जोहर जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक हंसी और मैं जवान, कुर्बान मेरी जान।
0: अरे वाह सर, इतना अच्छा तो आप गाते हैं, गाते रहिए, इसको कंटिन्यू कीजिए, अगली बार हम फिर आपसे थोड़ा और लंबा सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और
1: धन्यवाद आकाशवाणी का भी, धन्यवाद सभी रेडियो श्रोताओं का, धन्यवाद
0: जी,
1: सब लोगों का धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच सर। तो ये थे राजेश जी, और बड़े ही खूबसूरत गाने की इन्होंने फरमाइश हमसे की, और साथ ही उसे गुनगुनाया भी, सुनेंगे ये गाना। लेकिन उससे पहले मुझे है आपको याद दिलाना कि आप जाएंगे कहीं नहीं, इस गाने के उस पार आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, देश और दुनिया से जुड़े, और ठीक 10:30 बजे फिर से जुड़ जाएंगे, क्योंकि दिल का मेल बॉक्स खुला रहेगा और मैं यानी नाज करूंगी आपका इंतजार।

कोड़ी दिखावी कोड़ी न। अरे वांगी न तोड़ का जोड़ी न, काकड़ी भी खावी कोड़ी न, गाजर नी मुड़ा दूधी दूध खुड़ा पाव के।

ठंडा हो। क्यों चाचा क्या हुआ? कोमड़ी आधी का अंडा हो। अंडा अंडा कोमड़ी पतला का चाचा ठंडा हो। कोमड़ी आधी का अंडा हो। उत्तर सांगा निकाय पण मांगा दाऊ न दाऊ माला डंडा हो। पतला का चाचा ठंडा हो। कोमड़ी आधी का अंडा हो। उत्तर सांगा निकाय पण मांगा दाऊ न दाऊ माला डंडा हो। सलाम जैन राहु सारे हसबू या दुनियेला। सलाम जैन राहु सारे हसबू।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा, अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस TMC में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। TMC से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को TMC के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. More than 10 people lost their lives and several others are rescued after a fire broke out at a hotel in Malviya Nagar, Delhi this morning. According to the Delhi Fire Services, 15 fire tenders rushed to the spot to douse the fire. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, Mr. Modi said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced that an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund will be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also expressed grief over the tragic loss of lives in the fire incident. In a social media post, Ms. Gupta said that immediately after receiving information about the incident, teams of Delhi Fire Services, Delhi Police, District Disaster Management Authority, CATS Ambulance Services and other emergency response agencies were mobilized and launched the rescue and relief operations. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the last home and the last village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
1: PM Janman Yojana ke तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स और है PVTG सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
2: West Bengal former ruling party the Trinamool Congress is in turmoil and on the verge of split. Expelled TMC MLA Rita Brata Banerjee claims the support of nearly 60 MLAs, a number that could decisively shift the control in the assembly. His faction has already written to Speaker Ratindra Bose asking to be recognized as the real TMC. In a counter move, TMC announced Shobhan Deb Chattopadhyay as the leader of the house, with Ashima Patra and Nayan Bandopadhyay as deputies and Farhad Hakim as chief whip. Former Chief Minister Mamata Banerjee at a rally in Kolkata accused the BJP of orchestrating the split. The Central Board of Secondary Education CBSE has said that nearly 40,000 students have successfully submitted their re-evaluation applications and completed the application process without facing any issues. CBSE had yesterday opened the online portal for verification of issues, observed and scanned copies of answer books and re-evaluation of answers for Class 12 students. The facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. In a social media post, CBSE informed that payment gateways of SBI, Canara Bank, Bank of Baroda and the Indian Bank are available on the verification and re-evaluation portal for students applying for post-result services. CBSE has clarified that students are not required to hold accounts with any of these banks to complete the payment process. India has surpassed the United States in annual solar capacity additions to become the world's second largest solar growth market in 2025. Highlighting the remarkable achievement, Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi today said that the country's solar growth story is setting global benchmarks and driving record capacity additions through strong policy support, innovation and world-class infrastructure. In Karnataka, Congress Legislature Party leader D.K. Shivkumar will be sworn in as the 25th Chief Minister of the state by Governor Thavarchand Gehlot at 5 past 4pm in Bengaluru today. Former Home Minister Dr. G. Parmeshwar will be sworn in as the Deputy Chief Minister. And that is the end of this news bulletin.

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में बातें गुजरे जमाने की एक प्यारी सी चाइल्ड एक्टर की, जिन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक बेहतरीन काम किया। उनके नाम पर दो दो नेशनल अवार्ड्स हैं, एक एक्टिंग के लिए और दूसरा कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। किन की बात कर रही हूँ मैं, जरा सोचिए। अच्छा, गाना सुनाती हूँ, उनके ऊपर फिल्माया, आप अंदाजा लगाइए।

गीत गाता चल इस फिल्म से गाना आपने सुना आरती मुखर्जी की आवाज़ में, जो कि फिल्माया गया था सारिका पर। वैसे नया नया तो सारिका को लगता ही होगा, वो बहुत ही छोटी सी थी जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया और इस फिल्म में वो एकदम से बड़ी होकर नजर आई पर्दे पर। दोस्तों आज हम अभिनेत्री सारिका ठाकुर की बात करने वाले हैं, यानी कि सारिका की। सारिका स्क्रीन पर जितनी सहज नजर आती उतनी ही ज़्यादा मुश्किल रही उनकी ज़िंदगी। ऐसा कहा जाता है कि सारिका ने एक बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजारी है। दोस्तों सारिका का जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली में हुआ था। वो महज 5 साल की थीं जब पिता के चले जाने के बाद उन पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आन पड़ी। कहते हैं कि जिम्मेदारियों की वजह से सारिका अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी। और भी बहुत कुछ है उनके बारे में जानने के लिए, सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड।

राकेश रोशन और सारिका पर फिल्माया गया था ये गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना। दोस्तों, फिल्म का नाम है देवता, जिसे आपने ये गाना सुना, और हम बातें कर रहे हैं सारिका की। अभिनेत्री सारिका के करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के तौर पर हुई थी। उनके पहले किरदार का नाम मास्टर सूरज था। जी हाँ, कभी छोटे से लड़के कभी लड़की का किरदार वो निभाया करती थी। 1967 में दोस्तों एक फिल्म आई थी हमराज, आपको बहुत अच्छे से याद होगी ये फिल्म, और इस फिल्म में सारिका को खूब पहचान मिली। हमराज में उन्होंने अभिनेत्री विमी की बेटी का रोल किया था, जिसका नाम सारिका ही था। इसके बाद सारिका बेबी सारिका के नाम से मशहूर हो गई। प्यारी सी मुस्कान और भूरी आंखों वाली सारिका 60 के दशक में एक जानी मानी चाइल्ड एक्टर बन चुकी थी। तो हमराज फिल्म से ही ये गाना मैं आपको सुनाती हूँ।

मोहम्मद रफ़ी और उनके साथ में आशा भोसले की आवाज़ आपने सुनी। जानी दुश्मन फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत था और मैं चाहती थी कि ये गाना आप ज़रूर सुने, मुझे तो ये बहुत पसंद है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये गाना बहुत अच्छा लगता होगा। दोस्तों, इस फिल्म में बिंदिया का किरदार निभाया था सारिका ने। कितनी प्यारी, कितनी मासूम लगी थी इस फिल्म में। दोस्तों, सारिका ने पर्दे के पीछे तो नाम कमाया ही है, साथ ही साथ वो एक मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं कि एक इंसान है, मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। उन्होंने हर तरह के चैलेंजिंग किरदारों के साथ साथ एक ऐसा किरदार निभाया जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। शायद आपको पता हो कि एक कामयाब कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हैं सारिका। सारिका ने कमल हासन की चर्चित फिल्म हे राम के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे और कमाल की बात यह है कि उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। हे राम का गाना तो मैं नहीं सुना सकती हूँ, गाना है नहीं उनके ऊपर कोई फिल्माया हुआ, लेकिन हाँ, बड़े दिल वाला फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गाना सिर्फ आपके लिए।

उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये गाना सुना बड़े दिलवाला फिल्म से। और दोस्तों 60 के दशक की प्यारी सी मासूम सी बाल कलाकार बेबी सारिका की आज हमने बातें की, वो आज भी काम कर रही हैं। हालिया वर्षों में सारिका ने बार बार देखो पुरानी जीन्स, जब तक है जान, हरी पुत्तर और ऊंचाई जैसी चर्चित फिल्में की हैं। साथ ही सारिका टीवी पर भी कई बेहतरीन सीरियल्स कर चुकी हैं। उनकी दो प्यारी बेटियां हैं जिनमें से एक बेटी जो श्रुति हासन है, उनको आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, वो साउथ की एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी सारिका हमें टीवी और फिल्मों में यूं ही नजर आती रहेंगी। तो ये था आज का प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिलहाल तो वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन आप बने रहें आकाशवाणी एफ एम गोल्ड के साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। अपना ख्याल रखिएगा।

0: Shetty will meet China's Wang Hongyang in the men's singles this afternoon. In men's doubles, pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty suffered a setback after losing to Malaysia Kai Shing Tung and Aaron Tai by 6-11 in their match today. Benchmark domestic equity indices were trading over 0.5% lower in the afternoon trade today amid geopolitical jitters. The Sensex lost 524 points to 74,125, while the Nifty fell 147 points to 23,336 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritabrata Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतब्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री

0: रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली ये खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता

0: अमूल्य वर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: प्रसार भारतीच्या वेव्स OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजले आहेत। अद्वैत गाडगीळ यांचं सतारवादन आपण ऐकणार आहात, राग शुद्ध सारंग। यामध्ये आलाप विलंबित आणि द्रुतगत, गत 3 तालात निबद्ध आहे। त्यांना तबला साथ गणेश तानवाडे यांची। ऐकूया अद्वैत गाडगीळ यांचं सतारवादन, राग शुद्ध सारंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे विमानन क्षेत्र से जुड़े 77,00,000 रोजगार सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी।
1: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीज का एक ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड क्रिएट किया गया।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। ये योजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागीदार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति जाँच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्य

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: वकीलों, न्याय बंधु, कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: nca.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्वावधान में लेडी इरविन कॉलेज इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी का एक पद रिक्त है जिसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉलेज की वेबसाइट www.ladyirwin.edu.in। वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन निदेशक लेडी इरविन कॉलेज सिकंदरा रोड नई दिल्ली कॉलेज की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर जमा किए जा सकते हैं। यदि कोई संशोधन हो तो उसे कॉलेज की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। ये जानकारी 30 मई 2026 से 5 जून 2026 के रोजगार समाचार पत्र पर आधारित है। इसके अतिरिक्त लेडी इरविन कॉलेज में ही एक सेक्शन ऑफिसर, एक सीनियर असिस्टेंट और एक प्रोफेशनल असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये पद डेपुटेशन आधार पर भरे जाने हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ladyirwin.edu.in। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। संयुक्त निदेशक कैपिटल मार्केट 2 पद, उपनिदेशक बैंकिंग 2 पद, उपनिदेशक कॉर्पोरेट लॉ 2 पद, उपनिदेशक फॉरेंसिक ऑडिट 1 पद, उपनिदेशक अन्वेषण 3 पद, प्रधान निजी सचिव 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक बैंकिंग 4 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कैपिटल मार्केट 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कॉर्पोरेट कानून 4 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक अन्वेषण 2 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कराधान 1 पद, वरिष्ठ अभियोजक 3 पद, सहायक निदेशक अन्वेषण 12 पद। ये सभी 38 पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। निजी उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। रोजगार समाचार दिनांक 28 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 के अंक में प्रकाशित रिक्ति परिपत्र के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों पर वर्तमान रिक्ति परिपत्र के लिए विचार किया जाएगा। अतः जो उम्मीदवार पहले के रिक्ति परिपत्र के विरुद्ध आवेदन कर चुके हैं उन्हें उसी पद के लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। योग्यता, वेतनमान और अन्य जानकारियों के लिए देखिए वेबसाइट www.sfio.nic.in। इसके अतिरिक्त आप ये वेबसाइट भी देख सकते हैं www.mca.gov.in। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा 2026 के लिखित परिणाम की घोषणा। आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा 1 2026 के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा कर दी गई है और ये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.upsc.gov। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: ಕ್ರಮ.
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का. दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास. इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन. दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक के साथ हम हैं, मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया. नमस्कार रेणु जी.
2: नमस्कार मुनीश. हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड टू आर प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 FM गोल्ड. एंड आई एम रेणु कटारिया, एज मुनीश हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड मी, एंड His full name is Munish Sharma. And dear listeners, as Munish has informed, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India reports, capsules, tributes, and so much more, all for you over the next 30 minutes. And let's begin with the news headlines first, Munish.
1: Yes, Renu. So the first headline, दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया. प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा.
2: तृणमूल कांग्रेस फेसेस टर्मोइल एज एक्सपेल्ड. एमएलए ऋतब्रता बैनर्जी क्लेम सपोर्ट ऑफ नियरली 60 एमएलएज इन वेस्ट बंगाल असेंबली.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया.
2: सीनियर कांग्रेस लीडर डी के शिवकुमार सोन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका.
1: भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना. वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमरीका को पीछे छोड़ा.
2: And in Indonesia Open Badminton, HS Pranoy and Ayush Shetty to play in men's singles this afternoon. And dear listeners, it is now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we are going to talk about World Bicycle Day. And here I would like to quote Albert Einstein, Munish. He said, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. So this day is celebrated annually on June 3rd to acknowledge the simple, affordable, reliable and environmentally fit sustainable means of transport, fostering environmental stewardship and health. The day was adopted through a UN General Assembly resolution recognizing the uniqueness, longevity and versatility of the bicycle. Theme of this year is Cycling for a Greener Future. It highlights the bicycle's role in cutting carbon emissions, combating traffic congestion and promoting sustainable, healthy urban environments.
1: दरअसल साइकिल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के सबसे असरदार साधनों में से एक है. जनसंख्या वृद्धि को बढ़ते उत्सर्जन से अलग करके साइकिल चलाना शहरी हवा की गुणवत्ता को सक्रिय रूप से बेहतर बनाता है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है और इस मुहिम को इतनी ज़्यादा लोकप्रियता मिली है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें साइकिल चलाने को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में मुख्य धारा के तौर पर शामिल करने को बढ़ावा दिया गया है. चाहे इसका इस्तेमाल रोजाना शहरी सफर के लिए किया जाए या फिर सप्ताहांत में मनोरंजन के लिए किया जाए, जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की जगह साइकिल का इस्तेमाल करने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सीधे तौर पर कम होता है.
2: एंड नॉट ओनली दिस मुनीश, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी सच एज वॉकिंग, साइकिलिंग और डूइंग स्पोर्ट्स हैज सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ. एट ऑल एजेस द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग फिजिकली physically active outweigh potential harm, for example, through accidents. Some physical activity is better than none. By becoming more active throughout the day in relatively simple ways, people can quiet

0: achieve the recommended activity levels. And here I'm remembering another thing, Munish, when we were kids, आजकल तो बच्चों को सिर्फ हम साइकिल देते हैं कि चलिए आप पार्क तक साइकिलिंग कर लीजिए या अपनी कॉलोनी के अंदर ही आप साइकिल चलाइए. बट आई रिमेंबर दोज डेज वेन वी यूज टू साइकिल टू स्कूल और हम लोग इतने एक्टिव रहते थे और इतना अच्छा लगता था साइकिलिंग करके. और हम देखते रहते थे कि आज मार्केट में कोई नई साइकिल आई है तो चलिए पापा को बोलते हैं कि हमें वो वाली आज साइकिल खरीदवाइए.
1: Indeed, and even now we would love to, but you know, the safety factor is a big concern.
0: Exactly.
1: That needs to be addressed. और देखिए रेणु जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसका तो कहना ये है कि पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचा तैयार करना स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने का भी एक जरिया है. शहरी क्षेत्रों के सबसे गरीब तबके के लिए, जो अक्सर निजी वाहन खरीदने में असमर्थ होते हैं, पैदल चलना, साइकिल चलाना परिवहन का एक साधन बन सकता है. साथ ही ये हृदय रोग, स्ट्रोक, कुछ प्रकार के कैंसर, मधुमेह और यहाँ तक कि मृत्यु के जोखिम को भी कम करता है.
0: एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ पीपल हु वॉक एंड साइकिल कंटिन्यूज टू बी अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द मोबिलिटी सॉल्यूशन फॉर हेल्पिंग सिटीज डीकपल पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम इंक्रीज्ड एमिशंस एंड टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड रोड सेफ्टी. और यहीं पर ही कोविड 19 पैंडेमिक के टाइम पे हमें याद आता है दैट मेनी सिटीज ऑल्सो लेड टू रीथिंक देयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स.
1: जी हाँ, एंड द गुड थिंग इज दैट एट लीस्ट इन बिग मेट्रो सिटीज यू कैन सी द डेडिकेटेड बाइसिकल लेन्स कमिंग अप फास्ट. सो मेरा ख्याल है कि धीरे धीरे सारे देश में ये साइकिल क्रांति जो है ये लोगों को पसंद आएगी और वो इसको बढ़ावा देंगे. विश्व साइकिल दिवस दरअसल साइकिल के इस्तेमाल से होने वाले फायदों की ओर तो ध्यान दिलाता ही है. ये परिवहन का एक आसान, किफायती, साफ, पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ साधन है. साइकिल हवा को साफ रखने, भीड़ भाड़ कम करने में योगदान देती है. साथ ही ये सबसे कमजोर तबके के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सामाजिक सेवाओं को ज्यादा सुलभ बनाती है. एक ऐसा टिकाऊ परिवहन सिस्टम जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, असमानताओं को कम करे और साथ ही जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करे, वो टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहद जरूरी भी है.
0: जी बिल्कुल. एंड इन इंडिया ऑन वर्ल्ड बाइसिकल डे टुडे द मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया हैज अर्ज्ड यूथ टू एम्ब्रेस साइकिलिंग एंड लीड द मूवमेंट फॉर अ फिटर, हेल्दियर एंड ग्रीनर नेशन. शेयरिंग अ वीडियो मैसेज ऑन द ओकेजन द मिनिस्टर नोटेड दैट अडॉप्टिंग साइकिलिंग एज अ रेगुलर हैबिट कैन एनकरेज अ बैलेंस्ड एंड डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल व्हाइल ऑल्सो सपोर्टिंग environmental sustainability and cleaner mobility. He added that cycling not only helps individuals maintain physical and mental well-being but also contributes towards building a healthier and greener nation.
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है. यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है. जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा.
0: So true, Munish. There are also so many countries bahar humne dekha hai jahan par ki wo cycling ko bahut importance dete hain and they urge their employees, many of these offices, they are urging their employees to cycle down to the offices. And that's also another reason humne dekha hai ki साइकिल्स आप देखिए कि कितनी तरह की आ गए हैं. देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ बाइसिकल्स. आपको शॉर्ट डिस्टेंस जाना है तो साइकिलिंग है, आपको माउंटेन अगर चढ़ना है तो उसके लिए एक अलग तरह की साइकिल होती है. एंड ऑल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिलिंग एंड वन ऑफ देम इज अल्ट्रा साइकिलिंग विच इज एनी बाइसिकल राइड दैट इज मोर देन 200 किलोमीटर्स और 125 माइल्स इन लेंथ और 6 आवर्स इन ड्यूरेशन कंप्लीटेड इन अ सिंगल एफर्ट, जो कि आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है. एंड फॉर डेकेड्स वी हैव सीन मुनीश दैट गोल्फ यूज टू बी द गो टू स्पॉट फॉर बिजनेस नेटवर्किंग एंड डील मेकिंग एंड टूडे मेनी साइक्लिस्ट सी अल्ट्रा साइकिलिंग इमर्जिंग एज अ सिमिलर स्पेस दो इन अ मोर ऑर्गेनिक वे. तो हम तो अपने लिसनर्स को सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं, राइड सेफली,

0: Stay active and help create a greener future.
1: तो रेनू, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और उनसे जानने का क्या कुछ खास आज उनके पास। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण और जैविक विविधता के प्रति जागरूकता आज वैश्विक प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में कच्छ के कोरी क्रीक क्षेत्र में विकसित किए गए मैंग्रोव लर्निंग सेंटर का उल्लेख किया। ये केंद्र न सिर्फ तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, बल्कि सीमावर्ती पर्यटन और पर्यावरण शिक्षा को भी एक नई दिशा दे रहा है। आइए सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवाणी की ये खास रिपोर्ट।
2: देश के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात का कच्छ जिला अपनी विशिष्ट भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। अरब सागर और थार रेगिस्तान के बीच स्थित यह क्षेत्र जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी कच्छ में सीमावर्ती कोरी क्रीक के पाडाला क्षेत्र में गुजरात वन विभाग के द्वारा स्थापित मैंग्रोव लर्निंग सेंटर पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का एक अनूठा उदाहरण बनकर उभरा है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके हैं।
3: गुजरात के कच्छ में भी दिनों मैंग्रोव प्लांटेशन बहुत जोरों पर हो रहा है। वहाँ कोरी क्रीक में मैंग्रोव लर्निंग सेंटर भी बनाया गया है। साथियों, पेड़ पौधों की, वृक्षों की यही तो खासियत होती है, जगह चाहे कोई भी हो वो हर जीव मात्र की बेहतरी के लिए काम आते हैं।
2: नारायण सरोवर कोटेश्वर पर्यटन सर्किट के निकट स्थित इस मैंग्रोव लर्निंग सेंटर की स्थापना तटीय पारिस्थितिक तंत्र, मैंग्रोव वनों के संरक्षण तथा सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। यहाँ ऑडिटोरियम, व्याख्यान केंद्र, पैदल पथ, अवलोकन मीनार और अन्य सुविधाएं विकसित की गई है। इस केंद्र की विशेषताओं और पर्यावरणीय जागरूकता में इसकी भूमिका के बारे में बताते हुए गुजरात वन विभाग के अधिकारी संदीप कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि यह केंद्र पर्यटकों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के अलावा जलवायु परिवर्तन और तटीय जैव विविधता के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।
4: मैंग्रोव लर्निंग सेंटर बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही था कि लोग जब वहाँ पे समुद्री सीमा दर्शन के लिए जाएं और जब मैंग्रोव के एक इकोसिस्टम के और मैंग्रोव के कोस्ट को देखते हुए, प्लांट्स को देखते हुए जब उस जगह पर पहुंचे, तो वहां पे बॉर्डर टूरिज्म के साथ साथ मैंग्रोव का जो समस्त जो साइंस है उसको एक अंडरस्टैंड करने को वहां पर मौका मिले। तो वहां जो सेंटर है, सेंटर में बेसिकली इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जिसमें कि मैंग्रोव का लाइफ साइकिल, मैंग्रोव का जो रोल है, मैंग्रोव का सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या रोल है, इकोसिस्टम में जो दूसरे जीव है उसको किस प्रकार से करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो होता है उसमें किस प्रकार का मैंग्रोव का रोल होता है, ये सारी चीजें बताई गई है। तो ये सारे सिस्टम के बारे में हम एक रिसर्च कर सके, ये सेंटर का डेवलपमेंट किया गया।
2: गौरतलब है कि समूचे गुजरात के कुल मैंग्रोव वनों का लगभग 71% हिस्सा अकेले कच्छ में स्थित है। मैंग्रोव समुद्री तटों को चक्रवात, सुनामी और तटीय कटाव से बचाने में प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। इसके अलावा वे मछलियों, केंकड़ों, प्रवासी पक्षियों और अनेक जलीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास भी उपलब्ध कराते हैं। वन विभाग के द्वारा मिष्टी यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स जैसी योजनाओं के माध्यम से मैंग्रोव विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती प्राकृतिक चुनौतियों के इस दौर में मैंग्रोव का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं बल्कि तटीय सुरक्षा और सतत विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में कच्छ का मैंग्रोव लर्निंग सेंटर पर्यावरणीय शिक्षा, प्रकृति संरक्षण और इको टूरिज्म के एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। परिक्रमा के लिए बूथ से अशरफ नथवाणी।
0: एंड लेट्स मूव ऑन टू छत्रपति संभाजी नगर। मुनीश, 3 youths from here have developed a mobile app for the blind. With the help of this app, the blind can complete their daily tasks. Among the 3, Shaunak Savargaonkar, an engineer, gave more information about this app. So let's listen in.
5: We have created an app called Let's See, which is made for the blind. This app uses the latest AI from Google to give an auditory description of all the surrounding. This app is very simple and has 4 buttons to describe the surrounding. One button is Smart View, second one is Read, third one is Ask Anything on an image, and fourth button is Ask Anything to AI. Smart View, when you click that button, it takes the image from the phone and gives a complete auditory explanation of the surrounding. Second button, Read Text, is used for reading. This button uses the latest AI models to read any text from any book or a newspaper. It doesn't matter

आज पुण्यतिथि है त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल की। भारत में दुग्ध क्रांति, जिसे दरअसल श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, उसके जनक वर्गीज कुरियन साहब के साथ मिलकर जिस हस्ती ने देश में सहकारी दूध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखी थी, उनका ही नाम है त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल।

0: दोस्तों, वर्गीज कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल ने मिलकर दूध के पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क और बच्चों के लिए मिल्क फूड का भारत में पहला संयंत्र स्थापित किया था। ये दुनिया में अनोखा अकेला प्लांट था जो भैंस के दूध को पाउडर में बदल देता था और इस तरह अमूल की स्थापना हुई। सामुदायिक नेतृत्व के लिए त्रिभुवन दास पटेल को 1963 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला और वर्ष 1964 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था।
1: जी, एंड टुडे वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू एंटनी क्विन, हु वाज अ मेक्सिकन अमेरिकन एक्टर, पेंटर, राइटर एंड फिल्म डायरेक्टर। और अगर हम इनकी मूवीज की बात करें तो पुरानी मूवीज में मुनीश सबको जरूर याद होगा, ला स्ट्राडा, द गन्स ऑफ नेवरॉन, ज़ोर्बा द ग्रीक, गन्स ऑफ सैन सेबेस्टियन, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, The Shoes of the Fisherman, The Message, Lion of the Desert, Last Action Hero and A Walk in the Clouds. And today we are also going to talk about Kerry Ray King, who is an American musician best known for being the guitarist and songwriter for the American thrash metal band Slayer. He co-founded the band with Jeff Hanneman in 1981 and remained a member for nearly four decades. Aur yahan par hum Munish sunne wale hain the metal band Slayer's song Where I Reign by Kerry King.

0: दोस्तों आज जयंती है हरविलास शारदा की, जो भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक थे। दरअसल पहले भारत में लड़कियों के बाल विवाह की बड़ी एक चिंताजनक प्रथा थी। इन्होंने केंद्रीय असेंबली से इसे रोकने के लिए 1925 में एक बिल पेश किया और शारदा बिल के नाम से मशहूर ये बिल सितंबर 1929 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। बाल विवाह प्रथा पर अंकुश लगाने के मकसद से बहुचर्चित शारदा एक्ट उन्हीं के नाम पर है। हरविलास जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के सचिव के रूप में भी काम किया था। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था हिंदू सुपीरियरिटी, जिसमें उन्होंने सप्रमाण ये साबित किया कि इतिहास काल में सभी क्षेत्रों में हमारे देश की सभ्यता अन्य देशों से काफी आगे थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं महाराजा कुंभा, महाराजा सांगा, शंकराचार्य, दयानंद और लाइफ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्हें राय बहादुर और दीवान बहादुर की पदवियों से भी सम्मानित किया गया। आज ही मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि गोविंद शंकर कुरुप की भी जयंती है। और दोस्तों अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का, तो इजाजत दीजिए हमें, यानी मैं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया, कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आपसे हम अनुमति लेते हैं। आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो सुनिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ

0: मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया है।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में NH-31 और NH-231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नत करने को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक है। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 12 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों को प्रशिक्षण देकर 10 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 304 अंकों के गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।

चैनल वही आपका अपना आकाशवाणी कार्यक्रम गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप। आपके साथ है हम रूमी मलिक, बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में अधिक प्यास, अधिक मिठास की जरूरत है। जी हाँ, कहते हैं कि गर्मियों में मीठा रस प्रधान होना चाहिए। आपके खाने में मीठे फल हों, रसदार फल हों, या फलों का रस, नींबू, शिकंजी, कुछ भी इस तरह के शरबत आप ले सकते हैं। तो जहाँ पे बात है खाने में मिठास की, वहाँ व्यवहार में भी तो मिठास चाहिए। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से इंसान धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार हैं। इन्हीं विचारों के साथ शुरू करते हैं गाते गुनगुनाते का आज का सफर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते। ढूंढना है तो परवाह करने वालों को ढूंढिए। अपनी परवाह करने वाले बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढिए। इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे, है ना। झांक के तो देखिए आपके दिल में आखिर कौन रहता है, कौन करता है आपकी फिक्र दिन और रात।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

सलाम, मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूँ और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत

गाते गुनगुनाते का सफर चल रहा है आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके साथ है हम रूमी मलिक। बहुत से लोग, बहुत से गेस्ट आते हैं, बहुत सबको हम जानते भी हैं, जानी मानी हस्तियां हैं जिनके साथ कभी रेडियो प्लेज भी किए थे। एक बात मैं कहना चाहूंगी एज एन आरजे, है ना, क्योंकि मुझे भी 26 साल तो हो ही चुके हैं आकाशवाणी पे। टाइम, टाइम इज प्राइम, ये चीज किसने सिखाई? रेडियो ने सिखाई। जनाब एक टाइम ऐसा था जब लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे ऑल इंडिया रेडियो की सुई से। अरे इतने बजे समाचार हैं तो इतने बजे घड़ी सेट करते थे। वो पहले वैसी वाली घड़ियां होती थी ना, एनालॉगस, है ना, जिसको बाकायदा उस चाबी से सेट किया जाता था। तो घड़ियां

चाहे पहनने वाली हो चाहे क्लॉक हो, ऐसे किया जाता था। तो देखिए पंक्चुअलिटी जो है ना, डिसिप्लिन, ये सिखाया आकाशवाणी ने, है ना। तो आकाशवाणी पर रह ही टिक ही वही सकता है जो एक डिसिप्लिन के साथ चलता हो, जिसे समय की कद्र हो। मित्रों आप देखिए कि समय लगता है, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं ना, आपने बहुत सारा धन उपार्जन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कितना भी धन खर्च लें, आप खोया हुआ समय वापस नहीं ला सकते। सो लाइक आई सेड, टाइम इज प्राइम। सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz, गाती गुनगुनाते हैं। जो दोस्त अभी जुड़े हैं, आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत है आपके साथ, हैं हम रूमी मलिक।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बेजार इंतजार, ये हमने हिंदी के गानों में, पंजाबी तो चलिए उड़ीका एक वर्ड ये हो गया, सोनियों भी हो गया, और कितने सारे शब्द हमने सीखे ना उर्दू के भी, संगमरमर है ना, संगमरमर जो होता है क्या होता है, मार्बल को बोलते हैं है ना, मार्बल मार्बल मार्बल की जो जिस ताजमहल जिस पत्थर से बना हुआ है मार्बल है ना, संगमरमर, लेकिन संग का मतलब पत्थर होता है। इसीलिए कहते हैं ना संग दिल सनम, यानी पत्थर दिल सनम। चलो आपको कोई अच्छा सा गाना सुनाए हैं, आहे हे, थोड़ा सा ऐसा ब्रीजी ब्रीजी सा जिसमें हवा चल रही हो है ना, आपको याद ना रहे कि अधिक मास में आप अधिक गर्मी झेल रहे हैं। आइए सुनते हैं।

0: गाते गुनगुनाते का सफर चल रहा है। कितने सालों बाद सुना ये गाना, अच्छा गाना है ना। इस फिल्म कौन सी थी बताओ? मेरे यार की शादी है। अब शादी होती है तो इंसान खुमार में आ जाता है, नशे में आ जाता है, नहीं? वैसे अगर आपको, आपके पास कोई जिंदगी का लक्ष्य हो, कोई पर्पज हो, तो मुझे लगता है मतलब आप हमेशा ही एक हाई पर रहेंगे। कोई नशा इस बात से बड़ा नहीं है कि आप थकते नहीं हैं। आप कभी थकोगे नहीं अगर आपका कोई पर्पस है या लक्ष्य है। अगर आप सोचते हो मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन काम कौन करे? काम पड़ोसी कर रहा है तो पड़ोसी ही बनेगा करोड़पति या पत्नी या जो भी। आप वहीं के वहीं रहोगे तो फिर इसलिए क्या जरूरी है? इसे जरूरी है पुरजोर मेहनत करनी। मेहनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। पर्पस होना चाहिए, आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए दूसरा देखे और कहे अरे वाह यार क्या काम करती है, क्या इसके जैसा होना चाहिए। तो जलो मत दूसरों से, ये देखो कि वो जो वहां पे पहुंचा है किस वजह से पहुंचा है, है ना। तो ये एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए लाइफ का, एक एम, है ना। और साथ साथ ऑफकोर्स ये भी होना चाहिए कि मैं जितना काम करूं विश्राम भी करूं, आराम भी करूं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अंधाधुंध दौड़ में भागे जा रहे हैं। तो आइए इसी बात पे सुनते, नशे की बात करते करते नशे पे गाना सुनेंगे। हाँ ये मैं क्या कह रही हूँ, अरे प्यार की बात हो रही है। हिंदी फिल्मों में आपको पता है ना, प्यार खुमार नशा उसको बिल्कुल एक ही तरह से पर्यायवाची की तरह से ले लिया जाता है, होता है ये। लेकिन सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ लॉन्ग टर्म जो प्यार आपका रहने वाला है ना, वो आपका अपने साथ है। हाँ ऑस्कर वाइल्ड था ना वो अंग्रेजी में जो नॉवलिस्ट और प्लेराइट, वो कहता था लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ लॉन्ग रोमांस। अब कभी देखो जो लोग अपने सुरूर में रहते हैं, अरे वो अपने आप से मोहब्बत करते हैं, दुनिया भी फिर उन्हें वैसे देखती है। आप अपने आप को जैसे देखोगे, द वे यू व्यू योर सेल्फ इज द वे द वर्ल्ड इज गोइंग टू व्यू यू।
1: ओके ज्ञान खत्म, गाना शुरू।

दोस्तों, गाते गुनगुनाते का सफर यहीं तक। रूमी मलिक को दीजिए इजाजत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड, खरा सोना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों को खुश रखिए। और इसी कामना के साथ कि जल्द मिलेंगे आपके साथ, हाजिर होती हूँ कुछ ही दिन बाद। अब सुनिए समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक

0: सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ETF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ETF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री DK शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, information and

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
1: और अब सदाबहार से रूपा धवन को दीजिए अनुमति, आप कुछ ही पलों में सुनेंगे संस्कृत में समाचार। नमस्कार।

0: विस्तरेणा। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु कतिपयाः महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात ETF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। एषा सहायता योजना 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तिष्यति। मंत्रिमंडलेन दिल्ली निकटवर्ती क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियंत्रणार्थम् अपि एकस्याः बृहत्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। आर्थिक संबद्धया मंत्रिमंडलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादीप पर्यन्तं 63 अधिक 100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतद् अतिरिक्तं समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31 अधिक 200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मूः अद्य राष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवती। नवदिल्ल्याम् आयोजितायाम् एकीकृत जनजातीय विकास समवायानां तथा एकीकृत जनजातीय विकासायोगस्य च विस्तार विषयिकायां समायोजितायां सभायां राष्ट्रपतिः अवदत् यत् देशव्यापिनः जनजातीय समाजस्य संस्कृतिः अत्यन्ता समृद्धा अस्ति, अतः जनजातीय समुदायस्य उन्नत्यर्थाः विशेष प्रयत्नाः करणीयाः। तया उक्तं यत् विकास कार्याणि अंतिम गृहं यावत् अंतिम ग्रामं यावत् च अवश्यं प्राप्नुयुः। राष्ट्रपतिः चिन्ताम् अपि व्यक्तीकृतवती यत् अद्यापि केचन जनजातीय वर्गाः शासनस्य विविधाभिः योजनाभिः अनभिज्ञाः सन्ति।
1: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक तो विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
0: राष्ट्रपति ही सर्वासाम संस्थानाम हितधारकान आहूतवती यत् जनजातीय युवभ्यः सम्मानजनक जीविकायाः तथा प्रत्येकं जनजातीय बालकाय विद्यालय शिक्षायाः सुनिश्चितीकरणं क्रियताम।
1: ये दूरदराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं उन तक तो एक रोड मैप बनाना चाहिए। आप कौन सी गांव को कवर किया, कौन सी पॉपुलेशन के थे, ट्राइबल के कितने लोग हैं, कहां तक तो हम पहुंच पाए कहां तक तो नहीं पाए। पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं, लेकिन उनको खुलना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा।
0: कर्णाटकस्य नूतन मुख्यमंत्री डीके शिवकुमारः शपथग्रहणं कृतवान्। कर्णाटक राज्ये कांग्रेस विधानमंडलस्य दलस्य नेता डीके शिवकुमारः अद्य बेंगलुरु नगरे राज्यस्य 25वां मुख्यमंत्री रूपेण शपथग्रहणं कृतवान्। राज्यपालः थावरचंद गहलोतः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदापितवान्। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर जी परमेश्वरः उपमुख्यमंत्री पदेन शपथं गृहीतवान्। अन्ये च 12 मंत्रिणः अपि मंत्रिपरिषदि सम्मिलिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्रिणे शुभकामनाः प्रदत्तवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिम बंगालस्य पूर्व सत्तारूढ दले तृणमूल कांग्रेस दले आंतरिक मतभेदाः प्रतीताः। दलात् निष्कासितः टीएमसी विधायक ऋतव्रत बनर्जी इत्यनेन उक्तं यत् तस्य पक्षे प्रायः 60 विधायकाः सन्ति। अस्य कथनस्य कारणेन राज्य विधानसभायां सत्ता संतुलन परिवर्तनस्य संभावनां प्रति चर्चाः तीव्राः जाताः।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: धन्यवाद अर्जुन. नमस्कार श्रोताओ, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं. और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन द नेगेटिव जोन. सेंसेक्स ड्रॉप्स ओवर 300 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्ड एट 23,406. कैबिनेट अप्रूव्स 10,000 करोड़ रुपीज ETF price stabilization fund. Also approves a scheme for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR for reducing air pollution. And global crude oil prices rise.

0: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मंदी में रहे। सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक की गिरावट में रहा। निफ्टी 23,406 पर हुआ बंद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए के ETF मूल्य स्थिरता फंड को दी मंजूरी। वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की योजना को भी किया पारित। और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई वृद्धि।
1: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: और अर्जुन, अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज गिरावट पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में भी आज मंदी दर्ज हुई। मिड कैप 100 सूचकांक 0.4% से अधिक की गिरावट पर बंद हुआ और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.1% की गिरावट दर्ज हुई। सत्र की शुरुआत में बाजारों में 1% से अधिक की गिरावट आ गई थी। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पर अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में आई वृद्धि और विदेशी फंडों का भारत से प्रवाह बने रहने के बीच बाजार की धारणा पर दबाव बना रहा। हालांकि जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ा, निचले आकर्षक मूल्यों पर हुई खरीदारी के बल पर दोनों सूचकांक काफी हद तक अपने दिन की गिरावट से उबर गए।
1: Benchmark domestic equity indices ended with moderate losses today. The BSE Sensex dropped 304 points to close at 74,346. NSE Nifty slipped 78 points to settle at 23,406. The broader market at the NSE also ended in negative zone. The mid-cap 100 index fell over 0.4% and the small-cap 100 index dipped 0.1%. Earlier today, markets witnessed a decline of more than 1% as sentiment remained under pressure amid uncertainty surrounding the US-Iran negotiations, rising crude oil prices and continued foreign fund outflows. However, as the day progressed, both stock market indices recovered a significant portion of their intraday losses, supported by value buying at low levels.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 17 के शेयर गिरावट पर बंद हुए। सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों में TCS 8.4% से अधिक, टेक महिंद्रा 6.2% से अधिक और HCL 5.2% से अधिक की गिरावट में रहे। इसके विपरीत इंडिगो के शेयर में 1.6% का उछाल आया। SBI का शेयर 1.4% बढ़कर बंद हुआ और ICICI बैंक का शेयर 1.3% के फायदे में रहा।
1: In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 13 out of the 25 sectors ended in negative territory. The focused IT sector emerged as the biggest drag, plunging over 5.2%, followed by IT, which shed 5%. Realty also dropped over 1.5%. Among the top gainers, a telecommunication surged 2%, PSU banks climbed more than 1.7%, and BankEx, as well as hospitals, rose 0.9%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,400 companies declined, 1,812 companies advanced and 174 companies remained unchanged.
0: रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक, जो 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वह दिन के कारोबार में 99.3 पर था। और हमारे साथ स्टूडियो में आज वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ AK भट्टाचार्य आमंत्रित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर।
2: नमस्कार, धन्यवाद
0: मिस्टर भट्टाचार्य। जैसे अभी हमने पढ़ा सेंसेक्स की स्टोरी, 300 अंकों से अधिक की गिरावट आई है। कल की तेजी के बाद मंडे को भी गिरावट थी, तो ये जो एक अप एंड डाउन हम देख रहे हैं, लेकिन आज की जो रिकवरी है, आज की जो इंट्राडे रिकवरी है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या क्या फैक्टर्स अभी बाजार को

0: नीचे की तरफ खींच रहे हैं और कौन सा फिर उनको ऊपर उठा रहे हैं?
1: देखिए, एक तो है कि अगर आप आंकड़ों को देखें तो जो स्टॉक मार्केट में जो शुरुआती दौर में दिन के ट्रेडिंग में करीबन अगर सेंसेक्स को देखते हैं तो 1.5% की गिरावट आई। उसके बाद जो रिकवरी हुई करीबन 1 percentage point की रिकवरी हुई, उससे एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो लॉस हुई है सिर्फ 0.41% की लॉस हुई है आपकी। तो इसका ये दर्शाता है कि एक तरफ तो जो वैल्यू बाइंग जिसे हम कहते हैं वो दिखने को आया आज पूरी तरह से, कि मार्केट ज्यों ही नीचे आई तो वैल्यूएशन के तौर से जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ी बहुत नीचे दामों में उन्होंने खरीद लिया, तो उसी के लिए रिकवरी हुई है। और जो दूसरी बात जो है कि जो वॉलिटिलिटी इंडेक्स जो है हमारा इंडिया विक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। उसका एक साइन ये है कि अगर मान लीजिए जो इन्वेस्टर्स की नर्वसनेस जो है वो कम दिखती नज़र आ रही है, और मुझे ये लग रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं मार्केट में वो असेस कर रहे हैं मार्केट की पूरी वॉलिटिलिटी को, और जो वेस्ट एशियन क्राइसिस और यूएस के साथ ईरान का एग्रीमेंट की पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए एक न्यू नॉर्मल की तरफ मार्केट जाती हुई नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कि अभी भी मेरे ख्याल से काफ़ी ऐसे सत्र आएंगे जिसमें ऐसे आप उतराव और चढ़ाव देखेंगे, पर वॉलिटिलिटी रहेगी। पर विक्स को नीचे आना और वैल्यू बाइंग की जो एक टेंडेंसी दिखने को नज़र आई वो लॉन्ग टर्म दृष्टिभंगी से आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है।
2: We saw the IT index plummet by almost 5% today, even though the quarterly earnings does not reflect any fall in the net profitability or revenue. And we saw banking, on the other hand, actually go up by 1%. PSU banking going up by 1.7%. What are the reasons?
1: Well, if you're looking at the IT sector, the IT sector has been majorly impacted by the AI developments. If you look at the IT sector's performance, at one level, its exports have been impacted, particularly those who are relying on the global capability center model. That earnings have been impacted. And the second level, the AI, which is the big elephant in the room, it's playing out, and its job prospects, and India's probably the Indian IT sector's lack of adequate preparedness to take on this challenge is showing in the stock market prices. But on the other hand, the banking sector is still in the pink of its health. And what you do see is that if the RBI governor, the Monetary Policy Committee, which meeting we started, probably keeps the rate unchanged, the banks probably will see their performance even get better with the bond prices.
0: आपने RBI पॉलिसी की बात करी, तो जैसा आप कह रहे हैं कि आमतौर पर शायद ये एक्सपेक्टेशन है कि जो पॉज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्या कोई आउटसाइड चांस है कि थोड़ी सी वृद्धि भी आ सकती है ये देखते हुए कि इन्फ्लेशन का डर बना हुआ है जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में सिचुएशन है उसकी कारण?
1: देखिए, इन्फ्लेशन का डर के लिए ही मैं समझता हूँ कि वो पॉज को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर जो इन्फ्लेशन का जो डर जो है वो पूरी तरह से इंटरनलाइज्ड नहीं हुआ है, सिस्टम में अभी तरह से पूरी तरह से आई नहीं है, और इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो असेसमेंट जो मुझे लग रही है बाहर से कि इस वक्त कोई स्टेप लेना शायद थोड़ा बहुत प्रीमैच्योर होगा, क्योंकि ग्रोथ को भी एक बढ़ावा देना चाहिए। अगर इसी वक्त अगर आप रेट को इंक्रीज करें इन्फ्लेशन की तरफ देखते हुए, शायद आप प्रीएम्प्ट कर देंगे ग्रोथ पॉसिबिलिटीज को। तो मुझे ये नहीं लगता कि इस वक्त RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कोई एक्शन लेगी, पॉज में रहेगी। हाँ, जो जो एकोमोडेटिव स्टांस जो है उसको शायद

0: बहुत रद्द बदल वो हो सकती है।
1: और जो प्रोजेक्शंस है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन और ग्रोथ, उन पर भी सबकी नजर रहेगी कि क्या इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन को थोड़ा बढ़ाया जाता है, ग्रोथ की प्रोजेक्शन को क्या।
0: मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमिटी के पहले जो जो जो गोल्डिलॉक सिचुएशन की बात कही गई थी वो अब गोल्डिलॉक सिचुएशन नहीं है,
1: भारत में ही नहीं किसी भी देश में नहीं,
0: किसी भी देश में नहीं है। और जो जो एक जो एडवांटेज जो था इंडियन इकोनॉमी का, वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो एडवांटेज भी नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी अगर लेटेस्ट रिपोर्ट भी देखें तो हर जगह एक एक कंसिडर्ड व्यू लिया जा रहा है कि किस तरह से आगे की जो जर्नी है उसको हम तय करें।
2: Well, let's have a look at the latest news on the MPC meet. The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee, MPC, began its three-day policy meeting in Mumbai today, with experts widely expecting the central bank to maintain the status quo on interest rates amid volatile global conditions driven by ongoing tensions in West Asia. The policy decision will be announced on Friday. So the repo rate is at 5.25%. Reverse repo rate is at 3.35%. Of course, you also have the overnight lending rate as well. You just mentioned that it would be an accommodative stance. It'll probably not be changed as well. But what are the factors in their mind? Apart from the West Asia crisis, the other point that is really playing on everyone's mind is President Trump's rhetoric regarding the U.S.-Iran war and imposing tariffs 12.5% on its trading partners for forced labor inputs, additional 12.5%. India already has an 18% tariff that's imposed by the US on imports. How do you see all of this playing out in the minds of the committee and, for that matter, the sentiment in the stock market?
0: Well, to a great extent, what happened in the stock market this morning was impacted by the revelation that the USTR committee, one committee, not two, both the committee, there are two USTR committees. One committee is on forced labor and the other committee is on production production capacity. On the forced labor, they have come out adversely against 60 countries, including India. So the 12.5% duty imposition, the threat, which will not come immediately, but maybe come maybe end of July or something like that. But the stock market was immediately hit by that. But it was also recovered to some extent with the news that probably this is a negotiating stance with the US, and this is come at a time when the USTR team is right now in India negotiating with India a bilateral trade agreement which is supposed to be concluded by 24th of July. So it's a mixed picture. My sense is the MPC committee will certainly take these developments into account because these impact India's exports and domestic industries' earnings and margins. But on the whole, what I feel is this, that the RBI Monetary Policy Committee will have to go beyond what the USTR has done and what the bilateral agreement will bring out. It has to address the larger issue of how you ensure that the growth momentum is maintained while inflation, the beast of inflation, is controlled.
1: Joe. आप बात कह रहे हैं यूएसटीआर की, उससे जुड़ी हम ब्यौरा भी बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि सेक्शन 301 के तहत प्रस्तावित टैरिफ से जुड़े घटनाक्रम पर भारत अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इसके साथ ही भारत इस वर्ष फरवरी में घोषित फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए भी अमेरिका से बातचीत कर रहा है। भारत समेत 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ वस्तुओं के आयात से बचने की प्रतिक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर द्वारा की गई जांच समाप्त होने के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का ये वक्तव्य आया है। इस जांच के बाद यूएसटीआर ने अमेरिका के अमरीकी व्यापार अधिनियम 1974 के सेक्शन 301 के तहत 60 अर्थव्यवस्थाओं से आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इन

0: प्रस्तावों में सेक्शन 232 में शामिल कुछ उत्पाद और कुछ अन्य उत्पादों को भी बाहर रखा गया है। कपड़ा और वस्त्र उत्पादों के लिए भी एक विशेष प्रणाली प्रस्तावित की गई है, जिसके तहत कुछ चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं से निर्धारित मात्रा में निचली टैरिफ दरों पर आयात को अनुमति होगी। रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित टैरिफ अभी पूरी तरह निर्धारित नहीं हुए हैं और पक्षधरों से 22 जून तक सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। लिखित टिप्पणियां 6 जुलाई तक सौंपी जा सकती हैं। 7 जुलाई को सार्वजनिक सुनवाई होगी। मंत्रालय ने कहा है कि यूएसटीआर टिप्पणियों और बयानों पर गौर करने के बाद ही प्रस्तावित कदमों पर अंतिम निर्णय लेगा। सो ये बैलेंसिंग एक्ट है, ये तो 60 कंट्रीज के अगेंस्ट है जिसमें इंडिया एक है, एंड एट द सेम टाइम आपको लगता है कि यूएस इंडिया डील जो है उसको भी आगे बढ़ाने की तरफ उनकी पूरी
1: देखिए, मैं ये समझता हूँ ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है
0: जी।
1: इस वक्त इंडिया एंड यूएस के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट की बात चल रही है, काफी एडवांस स्टेज में पहुंच गई है। इस वक्त मैं समझता हूँ ये जो सेक्शन 301 के तहत यूएसटीआर ने जो एक थ्रेट दिया है, ये थ्रेट एसेंशियली एक प्लॉय है जिससे कि बेटर डील यूएस की तरफ वो ला सके। और ये फोर्स्ड लेबर की जो आर्गुमेंट है उसमें भी मैं समझता हूँ ज़्यादा कोई दम नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड इश्यूज नहीं है, ये नॉन ट्रेड इश्यूज हैं। ये नॉन ट्रेड इश्यूज को ट्रेड में लाकर, ये इन्वेस्टमेंट की इश्यूज भी नहीं है, तो ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, प्लॉय है। इंडिया मेरे ख्याल से जिस तरह से स्टैंस ले रहा है कि वो चाहता है कि किस तरह से इसको नेगोशिएट करे पूरा सके।
2: US Ambassador to India Sergio Gore has said that 99% of the proposed India-US interim trade agreement has been finalized and both sides are working to resolve the remaining issues. Speaking at the City 2026 India Conference in Mumbai today, Mr. Gore expressed confidence that the agreement could be concluded within the next few weeks. Describing the India-US relationship as the most consequential partnership of modern times, Mr. Gore said cooperation between the two countries would help shape the future of global trade, technology, supply chains and security. He also highlighted collaboration under the Trust Initiative launched by Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump.
3: Under the framework, the United States is laser-focused on boosting bilateral cooperation on AI development and expanding trusted supply chains for active pharmaceutical ingredients and critical minerals. Today, the United States imports close to 40% of our generic pharmaceuticals from India. That's because we trust this place. That's because we want to work with this place. That's a massive life-saving ingredient to our country.
2: A U.S. trade delegation led by Chief Negotiator Brendan Lynch is currently in New Delhi for a three-day round of talks. Mr. Gore is also scheduled to meet Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal tomorrow. On a recent U.S. tariff measures, Mr. Gore clarified that they are part of a broader global trade review process and are not aimed specifically at India. That answers what you were just mentioning earlier, AKB. But apart from pharmaceuticals, APIs, and when you look at artificial intelligence, oil is another supply that they're willing to provide to India. So India is not dependent upon other trading partners. How do you see crude oil playing a major role here, even though it's not mentioned in the story?
1: Well, the crude oil will play a major role because India does need crude oil supplies in an uninterrupted way. Right now, it is not getting its oil from this thing. But please remember one thing, that this talk about is a very selective kind of a measure. The Apple phones that are produced here presumably don't have any forced labor clause impact. So how is it that the Apple phones produced here will be exported to the US without any restrictions, without any duties? So I find this US stance a little duplicitous, and this should be actually be resolved once the agreement is signed.
0: लेते अगली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजट या सहायता देने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता देने के लिए ये निर्णय लिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये एक आत्मनिर्भर कोष

0: है।
1: ETF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में बेसिकली एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ETF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ETF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा कि इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: ETF मूल्य स्थिरता समर्थन 36 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा। पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय ETF की कीमतें मार्च में 60.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 2.5 गुना इस वर्ष मई में 142 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों, एक और बहुत अहम फैसला, ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। 9585 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय खर्च वाली इस योजना के तहत BS4 या इससे भी पहले वाले एमिशन नॉर्म्स वाले लगभग 2 लाख ट्रक और 16000 बसों की जगह BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण कम होगा। सो क्या कहेंगे आप, ये दोनों ही खासकर जो ETF का भी उसका त्वरित हम फायदा देखेंगे?
2: देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन जो है एविएशन मार्केट में, हमारे देश में जो दो प्रधान जो एयरलाइन विमान सेवा कंपनियां जो हैं, एयर इंडिया और इंडिगो, दोनों ने ही ऐलान किया है कि वो बहुत सारे अपने सेवाएं को वो काट रहे हैं। तो ये काटने का मतलब यही है कि वो अपने टैरिफ फेयर्स उतना बढ़ा नहीं सकते, पर ETF की दाम की जो बोझ जो है उनके ऊपर बहुत बढ़ गया है, तो वो मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने सेवाएं से काफ़ी कट किए हैं, कम कर दिए हैं। वो सरकार के पास ये देख रहे हैं कि ये एक बेसिक एसेंशियल सर्विस है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन एविएशन अगर इम्पैक्टेड हो तो उसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, GDP उसमें भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये स्टेबलाइजेशन फंड इसीलिए बनाया गया है जिससे कि जो विमानन कंपनियां जो हैं वो इस स्टेबलाइजेशन फंड से एक स्टेबल ETF प्राइस का वो कर लेकर वो अपनी सेवाएं अपने चला सके, उससे उनके मार्जिन में इम्पैक्ट कम होगा। और दूसरी तरफ जो पुराने ट्रक की जो डिसीजन ली गया है, इसका भी एक एफिशिएंसी के साथ ताल्लुक है। ये अगर पुराने जो ट्रक्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी लेवल जो फ्यूल यूटिलाइजेशन की जो है वो अच्छी नहीं होती, उसमें काफ़ी जो प्रोडक्टिविटी जो है जो ट्रक चलाने की जो एक फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो बहुत नीचे होती है।
0: सो प्रदूषण के साथ साथ फ्यूल भी बचेगा,
2: एफिशिएंसी भी बचेगा। तो मैं दोनों जो डिसीजन जो है ये आज की तारीख में दोनों के साथ ये कनेक्टेड है, और ये तेल इकोनॉमी को थोड़ा बहुत फायदा देने के लिए दोनों डिसीजन लिया गया है, हालांकि कारण डिफरेंट तरह के दिए गए हैं
0: जी। और अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। अधिकांश एशियाई बाजारों में आज तेजी थी। जापान का निकेई सूचकांक 2.5% के उछाल में रहा, सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.8% और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.2% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई, लेकिन हांगकांग का हैंगसेंग 1.5% से अधिक गिर गया। दक्षिण कोरिया का बाजार आज बंद था। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां मंदी थी। जर्मनी का डैक्स 1.1%, लंदन का फुटसी 0.2% से अधिक और फ्रांस का कैक 0.2% की गिरावट पर चल रहे थे।
3: Moving on to the US stock market, major US stock market indices extended gains yesterday and closed at record highs. The Dow Jones Industrial Average rose over 0.4% to close at 51,308. The S&P 500 gained 0.1% to close at 7,610, while the Nasdaq Composite Index ended marginally up to settle at 27,094. On the economic front, the US job openings rose sharply to 7.6 million in April, an increase of 100,000 from the previous month, while both hiring and overall separations eased, according to a report from the US Bureau of Labor Statistics. The data suggested demand for labor remains strong even as worker movement in payrolls cool. Very briefly, employment in the US going up, but this is a primary macroeconomic indicator.
2: This is a dichotomy of the US economy at a time when it is going through one of its major crises led by the oil prices, the pump prices are up, and yet, and probably it is the air.

0: AI-led, so maybe a sector of the economy is seeing this job boom, but this job numbers are giving a picture that is not endorsed by the real economy's pains. So this is one of those dichotomy which probably the Fed will have to deal with at some point when the new Fed Reserve Chairman is in place. So hopefully he will be able to address it more competently and more productively.
1: Let's have a look at the crude oil market. Global crude oil prices rose today amid renewed West Asia tensions and lack of progress in negotiations between US and Iran. Brent crude was trading 2.1% up at $98.02 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was also trading above 2.1% up at $95.78 per barrel when reports last came in. Very briefly, what are the points of contention you think are in the negotiations between US and Iran?
0: Well, essentially, whether the Strait of Hormuz, how will that be operated? I think Iran is still hoping that some sort of an arrangement is in place so that its revenue is in, it keeps coming, and the US is insisting that it should not happen. And plus, of course, there is this issue about uranium, enriched uranium, where will those, the nuclear dust settle down, and how will it be? These are the two major issues that are coming in the way. But Trump's latest statement seems to suggest that the U.S. Supreme Leader, Iran's Supreme Leader, is willing to have a discussion with the U.S. President very soon.
1: Let's have a look at the bullion market. Now, in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.3% down at 1,58,910 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.4% down at 2,66,370 rupees per kilogram a short while ago.
2: उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना 0.7% अधिक गिरकर 1,54,375 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 0.4% गिरकर 2,65,678 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी. ब्रीफली आपको क्या लगता है कीमतें सोने चांदी की कहां जाएंगी?
0: Well, अभी तक तो मुझे लगता है कि स्टेबल रहेंगी. मार्केट में जो हलचल मच रही है उसका ये रिफ्लेक्शन हो रहा है. जब तक ये हलचल चलती रहेगी ये मार्केट भी उसी तरह चलता रहेगा.
2: समय हमें अनुमति नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर भट्टाचार्य. आप आए और आपने विभिन्न विषयों पर हमें बहुमूल्य जानकारी दी.
1: And now the closing headlines in English. Benchmark domestic stock market indices end in the negative zone. Sensex drops over 300 points. Nifty settles at 23,406. Cabinet approves 10,000 crore rupees ATF price stabilization fund. Also approves a scheme for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR for reducing air pollution. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा.
5: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है. ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा. इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा.
4: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी

0: सार्वजनिक क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपये से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
2: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand,

0: made their lives easier, fairer, and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
1: Thank you very much.
2: Thank you.
0: I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
1: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in, deep dive into each of those aspects.
0: Absolutely. Mr. Tandon.
2: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है टैक्स में छूट जीएसटी का सरलीकरण डिजिटल क्रांति हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा जीएसटी रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें उज्ज्वला योजना की बात करें जनधन योजना की बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें सामाजिक सुरक्षा की बात करें पीएम स्वदिन योजनाओं की बात करें तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया
0: जैसे भी शरद जी ने
2: बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है
0: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं तो देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 इयर्स विद मोर देन 25 क्रोर पीपल एग्जिटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड एंटरिंग द न्यू मिडिल क्लास हाउ बिग एन अचीवमेंट वुड डू यू थिंक दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट शरद जी
1: आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट बिकॉज 25 क्रोर मे बी अ वेरी इजी नंबर टू स्पीक But this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. और देखिए हुआ क्या कि poverty index की जो definition बदला गया. You know, we've changed the definition because आप poverty को पहले कैसे define करते थे इतने रुपए रोज का. I think Niti Aayog came out with a very new and a promising definition कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, you know, on nutrition, on health, आपके पास घर नहीं है, tomorrow you get a house. You don't have a water connection, now you have a water connection. And let's not forget about the toilets, which has been, you know, sanitation has been very close to Prime Minister's heart. You know, jungle mein aur kheton mein jaake, you know, toilet ka istemal karna ya wahan par idhar udhar baith ke mahilaon ke liye khaskar bahut. So I think now there are toilets at. So the multidimensional poverty index needs to be understood, Anubha, from the point of view that not that a person has a very huge bank balance, but he's able to afford. And live a lifestyle which any other normal middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty because those people are financially fine. They may be earning whatever they earn. But today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
0: The facilities that are very basic facilities, Absolutely. Which is everybody's right and which should they

0: To spend, because that is one in economics we call it anubha, the trickle down effect. That has impact har work ko samaj ke usne fayda pahunchaya aur middle class to usme aati aati kyunki isse naukriyan bani hain, isse logo ki income. Aur main aapko bahut interesting baat bataun jo Tandon sahab meri baat se agree karenge ke mujhse jab log poochte hain kyunki hota kya jab aapki zindagi mein ye sab ghatnaye ghatti rehti hain welfare schemes, to you take it in your stead. Aapko lagta hai theek hai ye to hona hi tha bhai, ye to mera haq hai wagaira wagaira, aise khayal aate hain. पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, कि आप 2014 में जब ये सरकार आई 12 साल पहले आप कहां खड़े थे. शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं. तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion. And in the last 12 years, we reached 4 trillion. तो अगर economy double हुई है, तो economy तो हमको और आपको मिला के ही बनती है ना, goods and services produced by people like us. So I think that's a better way to look at it. And that for me, that is the biggest takeaway.
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे discussion के शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान. और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम करे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
2: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं. मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है. और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं, आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की. वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है. और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया. मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूँ तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी.
2: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है. तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं.
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है?
0: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अनुभा. देखिए, गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर, सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव, वो तो सरकार उतनी देगी. आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं.
1: बिल्कुल.
0: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबडी इन द कंट्री. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट. टूडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है. And I think a lot of people said that Startup India, you know, people have been doing businesses here for times immemorial. So what is new? Yes, there was something new because startup focused on innovation, startup focused on new ideas. And that is where the youth of the country or the youth intellect of the country got activated. A lot of youngsters, and today just on Startup India, there are 2 lakh plus registered startups. And you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund
1: yes.
0: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So Here, government became

0: SIPs, for health insurance. Combined together, they save tax about a lakh of rupees. Now, this lakh of rupees is going into health insurance, is going into insurance, is going into their retirement planning as well. And, you know, it'll be unfair, Anubha, if when we talk of tax and we don't talk of the tax savings made by GST. Somebody asked me that only 3 crore people in India pay tax. I said, no, every citizen of this country pays GST because that's indirect taxation. So this GST 2.0 has put money in the pockets of people. And because primarily we are a consumption-driven economy, 55 to 60% of our economy comprises of when me and you and Mr. Tandon goes and buy goods from the shopkeepers, from service providers. So I think that has taken a big boost. And in the current scenario, when global economy is facing challenges, it is the Indian consumption, Anubha, which is driving the growth of the country.
1: Let's move on to the next, you know, area which I think has impacted the lives of the middle class in a very significant manner, which is digitization. And we all know that Prime Minister Modi is a big votary of digitization. So what role has digitization played in the empowerment of middle class? Would you say that initiatives such as Aadhaar or even, you know, DigiLocker or even Umang, I'm just giving some few examples, that they have not only made public services mobile and paperless, but they've also in a way deepened the trust of the people in the government systems, Mr. Kohli?
0: I think it has brought the banking system, Anubha, in the pockets of people.
1: Financial inclusion?
0: Absolutely. You know, Jandhan Yojana, more than 56 crore accounts, and these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. Yeah. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so on. So today, all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
1: Yes.
0: I think this has been transformational, and a lot of countries around the world now want to emulate that example. So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
1: Ashok ji, aap kuch kehna
2: chahte hain? Yeah, main ye kehna chahta hoon ki ye Janadhan, Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikdi hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है. दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है. ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ है.
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है. पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में, और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
0: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है. और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ कर
1: डिजिटल डिवाइड, जिसको
0: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीज पीपल इन द विलेज अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज, आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड इज प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन. एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग. प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. कैसे ये कोविड में हम करते, पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती. बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ. आज भी प्रधानमंत्री जी, हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है.
1: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में
0: काम किया है हमें उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे. सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर. मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाकर रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं. और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं. दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन.
1: अशोक जी, आप कुछ कहना?
2: मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूँ, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से, और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है।
1: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
0: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything. For example, highways. Any middle class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours an Uber for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue with that commuter does. And Udaan, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगा। आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाए, आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा। अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है। छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे। आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी, अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है। आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट में पहुंच रहे हैं, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। द थिंग्स वी यूज्ड टू वॉच इंटरनेशनली, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में। सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी, विच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री।
1: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक। जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
2: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं, उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
0: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047 और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी।

0: ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिपेक्ष में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हैं कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था। क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
1: यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। वुमेन यू नो आर द बैकबोन ऑफ एनी मिडिल क्लास फैमिली। व्हाट इन योर opinion in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त LPG में, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं। और महिलाएं, चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई said earlier, they are in the mainstream. The percentage of women who are involved in the mainstream, that is increasing. And this is, Anubha, not just happening in the towns.
1: Jee.
0: I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know, jo self-help groups hain, wahan par mahilayein ikhatti hoke kuch business shuru kar rahi hain. Ministry of Cooperative ban gayi hai, jahan se bahut sari cooperative societies ke zariye mahilayein aage aa rahi hain. Aur aap agar dekhen, iska result kahan dikh raha hai Anubha, to aap dekhen ki jab bhi results aate hain kisi bhi examination ke, wahan mahila candidate sabse aage hoti hain. Ye is बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से, महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाए तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी, पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने कि इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड, वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को, आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं। तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें, तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है। और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास, वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है, उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: देखिए, जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट success stories, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashwani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on Air. This program is also available on our YouTube channel, News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
4: और आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9585 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर पुनर्विचार के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 16वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4 लाख करोड़ से अधिक के आवंटन की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआरपीबी को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। कुल 9585 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत उन ट्रक और बस के मालिकों को प्रोत्साहित करना है जो BS4 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं, ताकि वो उन्हें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल सकें। इस परियोजना को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2 साल की इस योजना का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस बदली जाएंगी।
9: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
8: मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने की घटना में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। घटना के फौरन बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण CATS एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमें तेजी से मौके पर पहुंची और बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया। 40 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू ने कहा कि सरकार मृतकों के परिवार के साथ है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही सभी एजेंसियां दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। राजधानी में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अधिकारी सभी संबंधित दस्तावेज जुटा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इमारत के पास वैध NOC थी या नहीं।
11: कार्रवाई चल रही है, ऐसी एक भी इमारत को छोड़ेंगे नहीं। गिरफ्तार किया जाएगा मालिक को जिसने लापरवाही की है, सब पे कार्रवाई हो रही है।
10: दिल्ली अग्निशमन सेवा के जनसंपर्क अधिकारी AK मलिक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिस इमारत में आग लगी है वह अंदर से पूरा पैक है।
12: सामने की तरफ फसाद लगा हुआ था और जितनी भी ओपनिंग बिल्डिंग के अंदर थी वो सारी सील। तो इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं दे एक्ट एज ए चिमनी, तो इसमें जब भी कभी फायर एक्सीडेंट होगा तो हीट और स्मोक बहुत तेजी से सारी फ्लोर पे फैल जाता है, जिससे कि लोगों को निकलने का समय नहीं मिलता।
10: दिल्ली सरकार ने कहा है कि सरकार त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
8: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर जनसेवा सदन पहुंचे। श्रीमती गुप्ता ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामलों के तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई केवल शिकायत दर्ज कराने का माध्यम नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास, संवाद और जवाबदेही को मजबूत करने का अहम मंच है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस साल 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।
10: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए निष्पक्ष और वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। इससे पहले न्यायालय ने पिछले वर्ष अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और विशेषज्ञों द्वारा नए सिरे से समीक्षा करने का निर्देश दिया था। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं या पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
8: दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने आज जंगपुरा और डिफेंस कॉलोनी अंडरपास क्षेत्रों में चल रहे नागरिक सुधार कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सफाई और व्यापक स्वच्छता गतिविधियों की समीक्षा भी की।
13: इस दौरान एमसीडी की जमीन पर अतिक्रमण का भी निरीक्षण किया गया और सार्वजनिक स्थानों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हटाने के आवश्यक निर्देश जारी किए गए। नगर निगम ने क्षेत्र में भीड़ कम करने और यातायात की सुगमता बढ़ाने के लिए सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण कार्यों की प्रगति का आकलन किया। वहीं निगम ने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए विकसित की जा रही वर्षा जल संचयन संरचना की भी समीक्षा की। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने क्षेत्र में कचरा और निर्माण मलबा फेंकने से रोक के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे बन रही सुरक्षा दीवार का भी जायजा लिया। निगम ने लाजपत नगर में चल रहे पार्क पुनर्विकास कार्यों की भी समीक्षा की और सभी परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
8: दिल्ली सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज बताया कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के माध्यम से राशन व्यवस्था को लेकर कुछ अधूरी और भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था में भी जनता को हमेशा राशन मिलता रहेगा। श्री सिरसा ने कहा कि इस व्यवस्था में ये फायदा है कि अगर लोग 2-3 महीने तक भी राशन नहीं ले पाते हैं तो वो राशन अगले महीने की पात्रता में जुड़ जाएगा और लोग उसे बाद में ले सकेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि एक प्रोग्रामेबल डिजिटल व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि इसे अधिकृत राशन दुकानों पर अनाज खरीदने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कोई दूसरी वस्तु नहीं खरीदी जा सकेगी और न ही राशि किसी अन्य काम में इस्तेमाल हो सकेगी। दिल्ली पुलिस ने आज मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस महिला आरोपी के पास से 216 ग्राम मादक पदार्थ और 5,00,000 रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई। ये बरामदगी दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने और सक्रिय पुलिसिंग तथा निरंतर प्रवर्तन कार्रवाई के माध्यम से जन सुरक्षा बनाए रखने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई मादक पदार्थ निरोधी दस्ते ने सुल्तानपुरी से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 2 किलोग्राम से अधिक का मादक पदार्थ और एक स्कूटी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने जमीनी स्तर के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए 16वें वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों को 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास एक विकसित भारत की नींव है। आधुनिक शासन में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देते हुए श्री सिंह ने पंचायत प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल उपकरणों और नवीन समाधानों को अधिक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
14: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है, जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते, और इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में के प्रति उनका समर्पण रहा। हम पंचायत के प्रति

0: प्रतिनिधियों से आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम कीजिए, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके।
1: दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत 34 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए, वहीं नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत 8 पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह में एनपीए 2025 की शेष श्रेणियों को शामिल किया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के 6 स्नातकोत्तर और 4 PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ई काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में दाखिला केवल ई काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 8 जून तक संस्थान की वेबसाइट www.iimc.admissions.nic.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। पहली सीट आवंटन की सूची 9 जून को जारी की जाएगी। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। दिल्ली में आज सुबह के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में मौसम साफ रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर पुनर्विचार के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
3: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
2: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
4: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
2: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने उड़ीसा में रामेश्वर से पारादीप तक 163

0: किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आया है। इससे पहले भी वे अलग अलग पदों पर रहते हुए भारत का दौरा कर चुकी हैं। सुश्री डेल्सी रोड्रिग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। श्री गौर ने दोनों देशों के रिश्तों को आधुनिक समय की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक बताया। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers. The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in the Delhi NCR area with a financial outlay of 9,585 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradeep in Odisha, spanning a total length of over 163 kilometers. In a major political development in West Bengal, Ritobrat Banerjee has been appointed as the leader of the opposition in the West Bengal Legislative Assembly. The appointment follows the Assembly Speaker's reported recognition of a rebel group of Trinamool Congress legislators as a separate legislature party. Ritobrat, a former CPIM Rajya Sabha MP who later joined the Trinamool Congress, secured the backing of nearly 60 MLAs, enough to cross the two-thirds mark required under the anti-defection law. The move has triggered a major split within the Trinamool Congress. Mamata Banerjee's faction had earlier nominated Shobhan Dev Chattopadhyay as leader of the opposition. Speaking to reporters after meeting the speaker, Rituvrat claimed that the dissident legislators now constitute the real and main opposition in the house. In Karnataka, senior Congress leader D.K. Shivakumar was sworn in as the 25th Chief Minister of the state. Governor Thavarchand Gehlot administered the oath of office. Dr. G. Parameshwar, who held the home portfolio in the Siddaramaiah cabinet, was sworn in as Deputy Chief Minister. 12 legislators also took oath as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi has congratulated D.K. Shivakumar on taking oath as the Chief Minister. In a social media post, Mr. Modi conveyed best wishes to him for his tenure. In a massive fire at a hotel in Malviya Nagar of Delhi, 21 people lost their lives while 40 were rescued this morning. DCP of South Delhi, Anant Mittal, said the fire has been successfully extinguished with the assistance of 8 fire tenders. The cause of the fire is yet to be ascertained. President, Vice President and Prime Minister have expressed grief over the loss of lives in the fire incident. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupinder Yadav said India has emerged as the world's second largest solar market. In a social media post, the minister highlighted that the country overtook the US in annual solar capacity additions in 2025. Mr. Yadav emphasized that the achievement reflects the nation's rapid clean energy growth, helping ensure efficient, reliable and sustainable solar infrastructure. Acting President of Venezuela, Delcy Eliana Rodriguez Gomez, has arrived in New Delhi on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance and others. During the visit, Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi. Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Laos, Phongsavan Phomvihan, called on President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. During the meeting, the President said that both the countries share close civilizational ties reflected in the common heritage of Buddhism and the Ramayana. She also said that the celebration of the 70th anniversary of establishment of diplomatic relations is a significant milestone in India-Laos bilateral ties. IMD has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, parts of northeastern India, West Bengal, Karnataka, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep during the next 2 days. And in badminton, India's Ayush Shetty entered the second round of the Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang in a comeback victory. And that is the end of this news bulletin.

सबको अपना अपना संगीत अच्छा लगता है। लोहार को निहाई पर हथौड़े की धमक, तो बढ़ई को अपने रंदे की खरर खरर, सुनार की धोकनी की फरर फरर, और जब ठठेरा लगातार ठोंकता है तो सारे साज शांत हो जाते हैं। पर जब बात आती है शास्त्रीय संगीत की, तो एक शक्ति के रूप में ये अपनी छटा बिखेरता है। टूटे दिलों को जोड़ता है ये संगीत। अगर जिंदगी एक संघर्ष है, तो इस संघर्ष से हमें जूझने की अथाह शक्ति पैदा करता है, पैदा करके हमें अथाह शक्ति से भर देता है संगीत। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है 8:11 और 53 सेकंड। आप हैं अपनी दोस्त

रूपा के साथ मधुरिमा कार्यक्रम में। और आज मधुरिमा में हम बातें करेंगे झपताल की और सुनेंगे फिल्मों से उन्हीं गीतों को जो कि होंगे रागों पर आधारित और पिरोए गए हैं झपताल पर ही। तो चलिए सुनते हैं पहला गीत जिसे हमने शामिल किया है फिल्म एक बार मुस्कुरा दो से। किशोर साहब के स्वर में ये गीत आप सभी के

0: एक बार मुस्कुरा दो फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। राग कल्याण पर आधारित ये गीत था। संगीत से पिरोया था इस गीत को ओपी नैयर साहब ने और गीत के बोल लिखे थे इंदिवर साहब ने और स्वर जैसा कि अभी हमने बताया किशोर साहब का। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।

0: 1000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं रूपा के साथ मधुरिमा कार्यक्रम में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बात की अभी आपसे कि आज हम मधुरिमा में सुनेंगे झपताल पर पिरोए गए कुछ गीतों को, और बातें होंगी झपताल पर ही। तो ताल का संगीत में मुख्य स्थान है। जिस तरह से शरीर में प्राण न होने पर वो मिट्टी के ढेर के समान हो जाता है, उसी तरह ताल के बिना संगीत भी अधूरा होता है। अगला गीत शामिल कर रहे हैं हम दिल तेरा दीवाना फिल्म से, रफ़ी साहब के स्वर में। भीम प्लासी राग पर आधारित ये गीत है और इसमें संगीत दिया है शंकर जयकिशन साहब ने और गीत के बोल लिखे हसरत जयपुरी साहब ने।

अभी आपने सुना दिल तेरा दीवाना फिल्म से रफी साहब और लता जी के स्वर में ये गीत। बात कर रहे हैं हम मधुरिमा में झपताल पर आधारित गीतों की, जिन्हें झपताल में पिरोया गया। वैसे दोस्तों, ताल से ही स्वरों को गति मिलती है, साथ ही संगीत को एक निश्चित समय के बंधन में भी ये बांधती है। इस ताल के कारण ही एक अलग असली रूप संगीत हमें चमत्कारी रूप से मिलता है, जो हमें आत्मविभोर कर देता है। सुनते हैं अगला गीत प्रोफेसर फिल्म से राग शिवरंजनी पर आधारित, संगीत शंकर जयकिशन साहब का और गीतकार हैं हसरत जयपुरी साहब।

तो दोस्तों झपताल पर सुने गीतों को आज आपने सुना मधुरिमा में। झपताल का परिचय भी आपको दे दें। झपताल 10 मात्रा की होती है जिसके 4 विभाग होते हैं जो कि 2-3 और 2-3 मात्रा के होते हैं। ये ताल गीत और ख्याल गायकी के साथ बजाई जाती है। मधुरिमा का सफर यहीं तक। अनुमति दीजिए रूपा को। फिलहाल आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के FM गोल्ड पर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम। नमस्कार।

नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगे खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स डबल्स में रोहन कपूर तथा ऋत्विका शिवानी गद्दे ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आर प्रज्ञानानंदा ने मैग्नस कार्लसन पर शानदार जीत दर्ज की। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल बाजी में उन्हें दूसरी बार हराया। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला अंडर 18 हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को और महिला टीम ने सिंगापुर को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश के युवाओं से साइकिल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने आज चीन के वेंग होंगयांग को 8-21, 22-20, 21-15 से हराया। वहीं मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की जोड़ी ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पोहान को 21-14, 21-14 से मात दी। एचएस प्रणय को आयरलैंड के नहत गुएन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशियाई जोड़ी कांग काई जिंग और अरुण ताई के खिलाफ पहले ही सेट में कंधे की चोट

0: आउट के कारण बाहर हो गए। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा को जापान की नोजोमी ओकुहारा से 21-15, 21-14 से हार का सामना करना पड़ा। सिंगापुर ओपन जीतने के बाद भारतीय प्रशंसकों को सात्विक चिराग से उम्मीदें थी, लेकिन वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए और अब सबकी निगाहें पीवी सिंधु पर होगी, जहां वो वुमेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में कल मुकाबला करती नजर आएंगी। और अब रुख कर लेते हैं शतरंज की ओर। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के खिलाफ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल बाजी में उन्हें दूसरी बार हराया और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पहले भारतीय चैंपियन बनने की अपनी दावेदारी को मजबूत किया।
1: प्रज्ञानंदा इस वर्ष क्लासिकल बाजी में कार्लसन को दो बार हराने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस एलीट डबल राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में उन्होंने पहले भी कार्लसन को क्लासिकल बाजी में हराया था। इस जीत से 20 वर्षीय प्रज्ञानंदा के 12 अंक हो गए हैं और वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ इस हार से कार्लसन की 8वीं बार नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। अब केवल 2 राउंड रह गए हैं और ऐसे में मौजूदा चैंपियन कार्लसन के लिए खिताब बचाना आसान नहीं होगा। कार्लसन का यह अभियान उथल पुथल भरा रहा है, जिसमें उन्हें 4 बार क्लासिकल बाजी में हार का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानंदा 9वें दौर में काले मुहरों से भारत के ही गुकेश से खेलेंगे। इस बीच अंक तालिका में शीर्ष पर चल रहे अमरीकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आर्मागेडन टाई ब्रेक में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया, जिससे उनके अंक 14 हो गए हैं। फ्रांस के फिरोजा ने क्लासिकल मुकाबले में गुकेश को हराकर 13 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। विश्व चैंपियन डी गुकेश की खिताब जीतने की उम्मीदें 8वें दौर में फ्रांसीसी ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा से एक और करारी हार के बाद खत्म हो गयी। वे 8 अंकों के साथ तालिका में सबसे निचले पायदान पर आ गए हैं। 2024 में विश्व चैंपियन बनने के बाद गुकेश का खराब प्रदर्शन जारी है। इस टूर्नामेंट में गुकेश की क्लासिकल बाजी में ये तीसरी हार थी। इससे उनकी इस साल के आखिर में उज्बेकिस्तान के चैलेंजर जावोखिर सिंदारोफ के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप के अपने खिताब का बचाव करने की तैयारी को भी झटका लगा है। उधर महिला वर्ग में कजाकिस्तान की बिबिसारा असाउबायोवा ने दिव्या देशमुख को क्लासिकल बाजी में हराकर खिताब की दौड़ में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चीन की झू जिनर ने भी क्लासिकल में जीत हासिल की। उन्होंने मौजूदा महिला विश्व चैंपियन जू वेंजुन को हराकर 10 अंक के साथ दिव्या की बराबरी कर ली है। मौजूदा चैंपियन अन्ना मुजीचुक और कोनेरू हम्पी ने अपना क्लासिकल गेम ड्रॉ किया। इसके बाद आर्मागेडन टाई ब्रेक भी ड्रॉ रहने से हम्पी को बोनस अंक मिल गया, क्योंकि वे काले मोहरों से खेल रही थी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुख कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर, जहां पुरुष और महिला वर्ग दोनों में भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। महिला अंडर 18 एशिया कप हॉकी के पुल ए के अंतिम मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 25-0 से हराया। भारत प्रतियोगिता में पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुका है।
2: भारत ने सिंगापुर के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया। भारत के कम 10 खिलाड़ियों ने गोल किए, जिनमें नौशीन नाज सबसे आगे रही। उन्होंने 8वें, 13वें, 17वें, 18वें, 40वें, 92वें, 98वें मिनट में गोल दागकर कुल 7 गोल किए। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही गीताश्री नामी ने 5 गोल किए, जबकि कप्तान स्वीटी कुजुर ने 4 गोल का योगदान दिया। प्रियंका मिज ने 22वें, 37वें, 53वें मिनट में गोल दागकर हैट्रिक बनाई। दिया 27वें, नैन्सी सरोहा 36वें, श्रुति कुमारी 40वें, पुष्पा मांझी 47वें, रश्मीन कौर 47वें और संदीपा कुमारी ने 91 मिनट में गोल करके अपना अहम योगदान दिया। भारत ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। कप्तान स्वीटी ने दूसरे ही मिनट में पहला गोल दागा। नौशीन ने 8वें मिनट में बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके बाद गीताश्री और नौशीन ने 13वें मिनट में एक एक गोल करके भारत की पकड़ मजबूत कर दी। भारतीय टीम ने इसके बाद भी गोल करना जारी रखा और अपनी सबसे बड़ी जीत में से एक दर्ज की। पूल ए में भारत ने मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर को हराकर 9 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पूल ए मैच के मुकाबले में आज भारत ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराया। भारत ने कजाकिस्तान, कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाफ जीत के साथ अपने पूल मैच खत्म किए, जबकि मेजबान जापान से उसे हार का सामना करना पड़ा। इससे टीम को 4 मैच में 9 अंक मिले। भारत

0: शुक्रवार को अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा। रुख कर लेते हैं प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट की ओर। फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स में दुनिया की नंबर एक और चार बार की ग्रैंड स्लैम विजेता आर्यना सबालेंका आज क्वार्टर फाइनल में डायना साइडर के खिलाफ 3-6, 7-5, 6-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। वहीं पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अलेक्जेंडर ने कल राफेल जोडर को 7-6, 6-1, 6-3 से हराया। सेमीफाइनल में ज्वेरेव का मुकाबला मेंसिक से होगा। आइए जानते हैं क्वार्टर फाइनल कैसा रहा उनका प्रदर्शन।
1: पिछले साल फाइनल में पहुंचे ज्वेरेव को कोर्ट फिलिप चैट्रियर पर पहले सेट में 19 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी ने कड़ी टक्कर दी। ज्वेरेव ने 2-5 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और 2 घंटे 17 मिनट तक चले मुकाबले को अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में और इस सीजन में क्ले कोर्ट पर 19 जीत के साथ सबसे आगे रहने के बावजूद 19 वर्षीय स्पेनिश ने पहले सेट में सर्व तोड़कर 5-2 की बढ़त बना ली थी, लेकिन ज्वेरेव ने अगले 6 में से 5 गेम जीतकर मैच को टाई ब्रेक तक पहुंचा दिया। इसके बाद ज्वेरेव तेजी से 3-3 की बराबरी पर पहुंचे और फिर लगातार 4 पॉइंट्स जीतकर सेट अपने नाम कर लिया। वहां से ज्वेरेव पूरी तरह हावी हो गए। अपनी पहली सर्व पर 71% पॉइंट्स जीतकर और जोरदार फोरहैंड लगाते हुए उन्होंने दूसरे सेट में 1-1 की बराबरी से लगातार 7 गेम जीते और 2 सेट की बढ़त के साथ मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस साल ज्वेरेव ने यहां 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 सेट गवाया है और यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच जैसे दिग्गज पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो ज्वेरेव पहले ग्रैंड स्लैम को अपने नाम करने के प्रबल दावेदार हैं। उधर भारत के एन श्रीराम बालाजी और ब्राजील के उनके जोड़ीदार मार्सेलो डेमोलिनर पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन से 3-6, 4-6 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: एशियाई रिले चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह 20 और 21 जून को चीन के सांग्यू में भारत की 29 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे। भारतीय टीम 6 रिले स्पर्धाओं में हिस्सा लेगी। एशियाई रिले चैंपियनशिप का तीसरा सत्र चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: होने वाली एशियाई रिले चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा की जाएगी। प्रतियोगिता में पुरुषों की 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले तथा महिलाओं की 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले स्पर्धाएं शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय टीम मिक्स्ड 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले स्पर्धाओं में भी हिस्सा लेगी। भारतीय टीम में पुरुषों के 4x400 मीटर और मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में तीर्थेश पी शेट्टी, अविनाश कुमार, सेतु मिश्रा, निहाल विलियम, एस संतोष, रिंस जोसेफ, सूरज अलगर राजा, मोहित कुमार, बरात श्रीधर हिस्सा लेंगे। वहीं 4x100 मीटर और मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में अनिमेश कुजूर, गुरिंदर वीर सिंह, हर्ष संतोष राउत, प्रणव प्रमोद गौरव, राहुल कुमार, गणेश कुमार, सेंथिल कुमार, तमिल राजू प्रतिस्पर्धा करेंगे। जबकि महिलाओं के 4x400 मीटर और मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में रशदीप कौर, पुअम्मा एमआर, अंसा बाबू, विजय कुमारी जी के, सलोनी नागर, नीरू पाठक, सुभा वी, गौरी नंदना चुनौती पेश करेंगी। और 4x100 मीटर मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में नित्या गंधे, तमन्ना, स्नेहा एसएस, सुदेशना शिवंकर, अभिनया राजराजन दमखम दिखाएंगी। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश की युवा पीढ़ी से साइकिल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा, आज देश की युवा शक्ति से साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की।
3: मैं देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ, साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है।
0: डॉक्टर मांडविया ने साइकिलिंग को पर्यावरण संरक्षण का सबसे टिकाऊ माध्यम बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का भी जिक्र किया।
3: जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे, उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा। आज ग्लोबल चैलेंजेस के इस दौर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी देशवासियों से पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया है। ऐसे में साइकिलिंग एक प्रभावी और सकारात्मक समाधान बनकर सामने आती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट को संडे ऑन साइकिल जैसे अभियानों ने नई गति दी है। देश भर के लाखों युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं।
0: और अब बात क्रिकेट की। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि उनकी टीम महिला T20 विश्व कप में अपनी अंतिम 11 को लेकर काफी स्पष्ट है और वे इससे पहले दो अभ्यास मैच का उपयोग कुछ और संयोजन आजमाने तथा राधा यादव और भारती फुलमाली जैसे खिलाड़ियों को अवसर देने के लिए करेंगी। भारत महिला T20 विश्व कप पहला खिताब जीतने के लंबे इंतजार को खत्म करने की उम्मीद से इंग्लैंड पहुंचा है, लेकिन वे मेजबान इंग्लैंड से 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 2-1 से हार गया, जिससे ICC के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से पहले उनकी तैयारियों को झटका लगा। स्मृति मानधना ने तीसरी T20 के बाद कहा कि इंग्लैंड में सीरीज खेलना जहां हमें विश्व कप खेलना है तैयारियों के हिसाब से बहुत अच्छा है। विश्व कप में सलामी बल्लेबाजों की भूमिका बेहद अहम होगी।
4: Coming early and playing a series in England, we're going to play a World Cup definitely. In terms of the preparations, definitely extremely good to do that. But yeah, again, taking back, definitely I think me and Shefali both have a huge role to play going forward. And we'll take it in our stride again with our bowling. Again, we'll go back to the drawing board, see which options can be better. We did that before this series. Maybe we can go back again. And now I think we know that these conditions, what balls to be bowled. I think those 2-3 things, I mean, I'm sure that it's going to help a lot.
0: भारत आगामी विश्व कप में अपना पहला मैच 14 जून को बर्मिंघम में अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप कल से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 400 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
5: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
6: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
5: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
7: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
5: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
7: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
5: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर

0: इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम

0: दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कंबोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nods to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrat Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader DK Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
3: ETF price stabilization fund mein
4: asal sustaining revolving fund has been established under the ETF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मॉनसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
3: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ

0: वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए? क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी तो कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और ISR इंस्टीट्यूट है जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं, और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम उपयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर ISR इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के दो दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की वो ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है, इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
0: मानसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मानसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है

0: वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का, उससे कम वर्षा रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है। इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है। इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है
1: जी
0: यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर जो मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो जिसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती है जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही, अगर धान की क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट फीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकालनी है जिसमें 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30 से 35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोस्फेयर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वास्तविक रूप से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है और कुछ क्रिटिकल अवस्था पर

0: किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है, जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है, जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए। खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात की, मध्य भारत की बात की, जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही, तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग एक हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है, जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं, और किसान को सही समय पे सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पर हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है, और कृषि वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है। और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें, मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है, और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
2: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है, भारतवर्ष के कहे या अगर उसको और बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो, और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत के में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है, इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, एक अगर जनरली हम बात करें इसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है, जबकि एल नीनो कंडीशन यानी कि जब समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मानसून सिस्टम है वो अपने आप में एक बहुत बृहद सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो, सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मानसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एल नीनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मानसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मानसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एल नीनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशंस से एल नीनो की वीक कंडीशंस की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एल नीनो कंडीशंस जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल्स दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है, यानी कि मानसून के दौरान एल नीनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र के जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा, जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित

0: और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए यह भी एक कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
2: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि कुछ पोषक तत्व वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस, पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक्के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमार भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30-35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उनका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आजकल एक फाल साथ में वार मार रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और आपका जो विस्तार तंत्र है खासकर मास मीडिया है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और साथ में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है तो इसके सहयोग का, हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं वो हो जाती है और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
0: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो लेते ह्यूमिडिटी है उसको रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरमेंट की कंडीशंस होती हैं ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो ये इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रैश शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
2: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपनों में चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इसे और भी अच्छा करने की संभावना है, क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके, जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है, जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री है उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है, और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करे। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है, जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
0: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में किया, अगर हम पूरे वैश्विक पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में जो रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रिजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान दिया जा रहा है।
1: जी।
0: इसके साथ साथ में AI का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और AI ML को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान

0: को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल, मानसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांवों में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मानसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध हैं, जो बौद्ध धर्म और रामायण की साझा विरासत में परिलक्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ का उत्सव भारत लाओस द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें

0: पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके कुमार शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जाँच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आस पास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही है जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दे को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
1: ATF price stabilization fund mein
2: a self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
1: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
0: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in the Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. In a major political development in West Bengal, Ritabrata Banerjee has been appointed as the leader of the opposition in the West Bengal Legislative Assembly. The appointment follows the Assembly Speaker's reported recognition of a rebel group of Trinamool Congress legislators as a separate legislature party. In Karnataka, senior Congress leader D.K. Shivakumar was sworn in as the 25th Chief Minister of the state today. Governor Thavarchand Gehlot administered the oath of office. Dr. G. Parameshwar, who held the home portfolio in the Siddaramaiah cabinet, was sworn in as Deputy Chief Minister. 12 legislators also took oaths as cabinet ministers. Several senior Congress leaders, including Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi and Congress President Mallikarjun Kharge, Chief Ministers of Telangana, Kerala and Himachal Pradesh attended the ceremony. Prime Minister Narendra Modi has congratulated D.K. Shivakumar on taking oath as Chief Minister. In a massive fire at a hotel in Malviya Nagar in Delhi this morning, 21 people, including foreign nationals, lost their lives while 40 others were rescued. DCP of South Delhi, Anand Mittal, said the fire has been successfully extinguished and the injured have been shifted to nearby hospitals for medical treatment. 26 people are currently receiving medical treatment. 10 police personnel who rescued several trapped occupants were hospitalized after suffering suffocation during the operation. The Delhi police has filed an FIR under charges of culpable homicide in the incident. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah have extended condolences over the loss of lives due to the tragic fire incident. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh today visited Max Super Speciality Hospital in Saket and AIIMS New Delhi and met those injured in the tragic fire incident in Malviya Nagar, including foreign nationals. In a social media post, the Union Minister offered condolences to the families who lost their loved ones. He also prayed for the speedy recovery of all those undergoing treatment. He said the ministry remains in close contact with the concerned embassies and is extending all necessary assistance. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the second round of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritwik Agarde defeated Chinese Taipei's Hang Po Suan and Hu Ling Fang. However, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty retired hurt from their opening round men's doubles match against Malaysia's Kang Min Hyuk and Man Wei Chong after Sattvik sustained an injury. The Indian Meteorological Department has issued an orange warning for heavy rainfall over Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, parts of northeastern India, West Bengal, Karnataka, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep during the next 2 days. And with that, we end this news bulletin.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बना। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज 5 दिन की यात्रा पर भारत पहुंची। कुवैत हवाई अड्डे पर ईरान के हमले में एक भारतीय की मौत। खाड़ी संकट बढ़ने से तेल की कीमतों में उछाल। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में प्रमुख आर्थिक मंच के आयोजन से पहले यूक्रेन का ड्रोन हमला। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी ने चीन के वेंग होंग यांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक भारत अमेरिका को पीछे छोड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत ने सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। ये विकास मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से क्षमता वृद्धि को रिकॉर्ड गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
3: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। श्री गोर ने दोनों देशों के रिश्तों को आधुनिक समय की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक बताया। अमेरिका का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन कर रहे हैं। श्री सर्जियो गोर ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को आधुनिक समय की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक बताया। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना

0: रिगेज गोमेज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सुश्री डेल्सी रोड्रिगेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाइयां, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो सेक्टर से जुड़े विभिन्न स्थलों का भी दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना और सहयोग के नए अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। इसका आधार ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, व्यापार और विकासशील देशों के प्रति साझा प्रतिबद्धता है। विश्व दर्पण के लिए अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अजीत वर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध हैं, जो बौद्ध धर्म और रामायण की साझा विरासत में परिलक्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ का उत्सव भारत लाओस द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन की विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। सुश्री कूपर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। कल शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष आज और तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए।
2: एक ड्रोन हमले में कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य यात्री टर्मिनल को नुकसान पहुंचा। हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 63 लोग घायल हो गए। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिक की मौत पर शोक व्यक्त किया है। दूतावास ने कहा कि वह कुवैती अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
0: यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के बाहरी इलाकों में ड्रोन हमला किया है। यह हमला रूस में एक बड़े आर्थिक मंच की शुरुआत से कुछ घंटे पहले हुआ। रूस के अधिकारियों के अनुसार वायु रक्षा प्रणाली ने रात भर में 59 ड्रोन को मार गिराया। हमले का असर सेंट पीटर्सबर्ग के 3 जिलों में देखा गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस हमले का जवाब देगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को इस आर्थिक मंच में भाषण देने वाले हैं। इसमें 130 देशों के हजारों प्रतिनिधि शामिल होंगे। हमले के कारण मोबाइल इंटरनेट सेवाओं में बाधा आई और पुलकोवो हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। पड़ोसी देशों लातविया और एस्टोनिया के कुछ हिस्सों में भी हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने कंबोडिया में UPI भुगतान सुविधा आरंभ करने के लिए कंबोडिया के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक ACLEDA बैंक के साथ साझेदारी की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पहले चरण में लाखों भारतीय यात्री 45 लाख से अधिक कंबोडियाई व्यापारियों को सुगमता से QR भुगतान कर सकेंगे और इसके बाद अगले चरण में 2 तरफा भुगतान सुविधा स्थापित की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि UPI भी सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर और श्रीलंका सहित 8 देशों में स्वीकार किया जा रहा है। श्रीलंका में भारतीय कंपनियों को महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त हुए हैं। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और मजबूत हो रहा है। भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन की श्रीलंका स्थित कंपनी लंका IOC को सपुगासकंदा पावर स्टेशन के लिए वर्ष 2026-27 में 3,16,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल की सप्लाई का ठेका मिला है। इस ठेके की कीमत लगभग 39 करोड़ श्रीलंकाई रुपए है। भारत की RS इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को श्रीलंका के मुल्लीकुल्लम विंड पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने का ठेका मिला है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 50 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेते फ्रेडरिक्सन को तीसरी बार पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क आपसी विश्वास, समान मूल्यों और सतत भविष्य के लक्ष्यों को साझा करते हैं। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी पुरुष सिंगल्स में चीन के वेंग होंग

आकाशवाणी है। भारत में व्यवस्थित रेडियो प्रसारण 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो नाम से शुरू हुआ था। इस प्रसारण को शुरू हुए 90 वर्ष हो रहे हैं। इस उपलक्ष में प्रस्तुत है वृत्त रूपक श्रृंखला प्रसारण की प्रतिध्वनिया का दूसरा भाग। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन और प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना और निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार।

खोया भारत अंगड़ाई ले रहा था। वीर जवानों में आजादी का जोश बढ़ रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान से सिंगापुर होते हुए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए कोहिमा तक आ चुके थे।

0: एक ओर गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना चाहते थे, तो दूसरी ओर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन पर अड़े हुए थे।
1: एक दिन वो भी आया जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब भारत छोड़ना ही पड़ेगा।
0: अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन और तेज हो गया।
1: भारत को आजाद कराने की विधि व्यवस्था के लिए इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया।
0: मोहम्मद अली जिन्ना ने कमीशन के सामने मुस्लिम लीग का अपना एजेंडा रख दिया। वे मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे।
1: 1946

0: में अंतरिम सरकार का गठन हो गया था।
1: 3 जून 1947 की सांझ ढल रही थी। सुगबुगाहट थी कि आज भारत की आजादी को लेकर नेता लोग आकाशवाणी आ रहे हैं। कुछ ही देर में वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह दिल्ली के प्रसारण भवन आ गए।
0: स्टूडियो की बत्ती लाल हुई। माउंटबेटन ने अपने साथ बैठे सहभागियों के चेहरे पढ़े और अपनी बात कह दी।
2: A statement will be read to you tonight, giving the final decision of His Majesty's government as to the method by which power will be transferred from British to Indian hands. But before this happens, I want to give a personal message to the people of India, as well as a short account of the discussions which I have held with the leaders of the political parties, and which have led up to the advice I tendered to His Majesty's government during my recent visit to London. Since my arrival in India at the end of March, I have spent almost every day in consultation with as many of the leaders and representatives of as many communities and interests as possible. I wish to say how grateful I am for all the information and helpful advice they have given me. Nothing I have seen or heard in the past few weeks has shaken my firm opinion that with a reasonable measure of goodwill between the communities, a unified India would be by far the best solution of the problem. I have made no mention of the Indian states, since the new decisions of His Majesty's government are concerned with the transfer of power in British India.
0: उन्होंने जो कहा उसका भाव था,
1: भारतीय लोग लंबे समय से आजादी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक तनाव और पाकिस्तान की मांग को देखते हुए भारत विभाजन रोकने के प्रयास सफल नहीं रहे। 72 दिन में यानी 15 अगस्त तक सत्ता हस्तांतरण किया जाना है, उससे पहले काफी काम करने हैं।
0: पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन का सार था,
3: यह एक कठिन निर्णय है जिसे हमने भारी मन से स्वीकार किया है, लेकिन यह फैसला हमें आजादी की ओर ले जाएगा।
0: मोहम्मद अली जिन्ना बोले,
4: हम जो चाहते थे वो हमें मिलने वाला है, बस थोड़े से सब्र की जरूरत है।
0: सरदार बलदेव सिंह के कथन का सार था,
4: मुल्क का बंटवारा होना कोई अच्छी बात नहीं है। देश के अंदर जिस तरह के हालात हैं, उन्हें देखते हुए देश का बंटवारा करना एक मजबूरी है। जरूरी है कि हम शांति बनाए रखें।
1: भारत के प्रसारण इतिहास में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय बहुत खास था। इसी समय ऑल इंडिया रेडियो ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित सत्ता हस्तांतरण समारोह का सजीव प्रसारण किया था।

0: वतन।
1: सेंट्रल हॉल खचाखच भरा हुआ था, वातावरण बहुत खुशगवार था। रात के करीब 12 बजे थे, एक उद्घोषणा हुई और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की सत्ता प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दी। इस अवसर पर वॉइसरॉय लुई माउंटबेटन ने अपने संबोधन में कहा,
2: I have a message from His Majesty the King to deliver to you today. This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebration. At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi.
1: प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने लोक प्रसिद्ध संबोधन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में कहा,
3: कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार

किया था, प्रतिज्ञा की थी, तब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। मुनासिब है कि ऐसे वक्त पहला काम हमारा ये हो कि हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद खुद मुख्तार असेंबली होगी और लॉन्ग years ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication for the service of India and her people, and for the still larger cause of humanity.

0: एक तरफ भारत की आजादी का जश्न था तो दूसरी तरफ विभाजन का दुख।
1: भारत के बंटवारे ने हमारी साझी विरासत को बड़ी ठेस पहुंचाई। दोनों ओर अनगिनत लोग हिंसा के शिकार हुए।

0: में बंटवारे के कारण जगह जगह शरणार्थी शिविर लगाए जा रहे थे। पाकिस्तान से विस्थापित कुछ लोग कुरुक्षेत्र में रुके हुए थे। गांधी जी को विस्थापितों से मिलने कुरुक्षेत्र जाना था, लेकिन व्यस्तता के कारण वे जा न सके। गांधी जी को सुझाव दिया गया कि वे रेडियो के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
1: गांधी जी पहली और अंतिम बार 12 नवंबर 1947 को रेडियो स्टेशन आए। 3 बजे उन्होंने कुरुक्षेत्र में ठहरे विस्थापितों को संबोधित किया।
2: मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। ये अनुभव मेरी जिंदगी में मेरे लिए दूसरा है। पहला अनुभव इंग्लैंड में हुआ था, जब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया। मुझको पता ही नहीं था कि मुझको इस तरह से कुछ बोलना है। मैं तो एक अनजान पुरुष हूँ, मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन दुख के साथ मिल जाना वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है, जीवन भर का मेरा पेशा है। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं, और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको

ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आने वाला तो कल था, लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी। तो घनश्याम दास जी ने शायद सोचना कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है, या तो कहूं कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूं तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है।

0: गांधी जी 9 सितंबर 1947 से 30 जनवरी 1948 तक बिरला हाउस में रहे।
1: बिरला हाउस में शाम के वक्त गांधी जी प्रार्थना सभा करते थे और इंडिया रेडियो प्रार्थना सभा की रिकॉर्डिंग करने स्टाफ को बिरला हाउस भेजता था।
0: इस कार्यक्रम का प्रसारण स्टूडियो से रात 9:30 बजे होता था।

0: सब कुछ सामान्य चल रहा था। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर अचानक वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गांधी जी की हत्या कर दी गई। पूरा देश दुख के अथाह सागर में डूब गया।
1: अगले दिन बिरला हाउस से बापू की अंतिम यात्रा निकाली गई।
0: इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ऑल इंडिया रेडियो के प्रतिष्ठित कमेंटेटर मेलविल डिमेलो ने किसी तरह एक वाहन में खड़े होने की जगह बनाई और वहीं से एक मोबाइल ट्रांसमीटर से उन्होंने अंतिम यात्रा का आंखों दिखा हाल सुनाया।
2: From the crowds. Now the fire is caught and more pieces of sandalwood are being placed. Garlands being flung into the air. Policemen's sticks being raised to try and keep the crowds down. We're trying to move in closer to get a last glimpse.

जनवरी 1948 को शुक्रवार था। गांधी जी की स्मृति को बनाए रखने के लिए आकाशवाणी से आज भी प्रत्येक शुक्रवार को गांधी जी

0: के जीवन पर आधारित गांधी चर्चा या ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है।
1: इसके साथ साथ बापू के प्रति जन भावनाओं का सम्मान करते हुए वर्ष 2001 में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने घोषणा की कि प्रतिवर्ष 12 नवंबर को आकाशवाणी में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाएगा। यही वो दिन है जब 1947 में महात्मा गांधी पहली और अंतिम बार आकाशवाणी आए थे।

0: बहुत संघर्षों के बाद देश स्वाधीन हुआ। विभाजन के दंश ने समाज में दरारें पैदा कर दी। दोनों ओर आपसी दंगे हुए। रेडियो से नेताओं की शांति की अपील बार बार प्रसारित की जा रही थी। इसका प्रभाव साहित्य और संस्कृति पर भी पड़ा। आकाशवाणी में अपर महानिदेशक रहे साहित्यकार राजीव कुमार शुक्ल बताते हैं,
1: 200 साल की ब्रिटिश औपनिवेशिक गुलामी से जब अगस्त 1947 में भारत स्वाधीन हुआ तो वो पूरे देश के लिए बहुत आनंद और उमंग का प्रसंग बना और पूरे देश में उसका उत्साह के साथ उत्सव मनाया गया। पर साथ साथ एक बहुत बड़ी विभीषिका भी उस नवस्वाधीन देश ने झेली जब भारत का विभाजन हुआ, दो देश बने। तो हुआ ये कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बड़ी तादाद में लाखों लोग सीमाओं के आर पार आए गए और साथ साथ भयानक हिंसा भी हमने देखी, सांप्रदायिक हिंसा भी देश ने झेली। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी संकट की बात थी क्योंकि भारत का स्वाधीनता आंदोलन भी जो है वो नैतिक मूल्यों को ऊपर रख करके और उनका पालन करते हुए चलाया गया था। हमारे जो स्वाधीनता आंदोलन के सबसे बड़े नायक थे, सबसे बड़े नेता थे, जिन्हें हम उचित ही राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी, उनकी पूरी सीख ये थी कि हम अहिंसा की शक्ति से संसार की सबसे बड़े साम्राज्य का मुकाबला करेंगे। लेकिन आजादी के बाद भारत में हमने उस बड़े संकट को देखा। स्वाधीन भारत की जो सरकार थी, चूंकि इस देश ने शुरू से ही धर्मनिरपेक्षता को एक मूल्य के रूप में, आदर्श के रूप में स्वीकार किया था, तो वह हिंसा किसी तरह से भी स्वीकार्य नहीं थी। इसलिए पूरी तरह से प्रयास ये हुआ जो हमारे नेता थे आजादी की लड़ाई के और उसके बाद भारत की आजाद सरकार के, प्रधानमंत्री पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल और अन्य तमाम जो लोग थे, मौलाना आजाद और तमाम जो महत्वपूर्ण हमारे नेता थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में वो सब लगातार शांति स्थापना के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे, अपीलें कर रहे थे। और तय बात है कि उस समय आजादी मिल चुकी थी और इसलिए ऑल इंडिया रेडियो की भूमिका भी अब भारत के हित में काम करने की हो चुकी थी, भारत की जनता के हित में काम करने की हो चुकी थी। तो शांति की जितनी भी ये बातें थी, शांति के जितने भी प्रयास थे, उनको आगे बढ़ाना और साथ साथ ऐसे माहौल में एक दूसरा पक्ष ये होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का प्रसार, सही सूचनाओं का प्रसार, कि अगर सूचनाएं सही सही मिलती हैं तो अफवाहों का बाजार उतना गर्म नहीं होता, झूठ का उतना प्रसार नहीं होता। तो ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत जोर शोर के साथ ये किया। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण ये भी भाग था कि महात्मा गांधी की जो प्रार्थना सभाएं होती थी उनका भी फिर प्रसारण होता था और साथ साथ इस तरह से लगातार ये प्रयास होता था। हम जानते हैं कि ये जो विभीषिका थी, उस विभीषिका ने दोनों ही तरफ का गहरा असर इतना पड़ा कि हमारे साहित्य में, संस्कृति में भी इसका प्रभाव आया, चित्रकला में आया, साहित्य में। हम जानते हैं कि हिंदी की अगर बात करें, कि यशपाल का झूठा सच सबसे बड़ा, उसको एक महागाथा के रूप में लिया जाता है, विभाजन की त्रासदी की, भीष्म साहनी जी का तमस और ऐसी अनेक रचनाएं हैं, असगर वजाहत का एक बहुत मशहूर नाटक है जिन लाहौर नहीं देखा, इस तरह से अनेक रचनाएं ली गई, कृष्णा सोपती की रचनाएं हैं, अमृता प्रीतम की रचनाएं हैं जो पंजाबी में लिखी गई, और उधर गर्म हवा जैसी एक महान फिल्म भी बनी, बहुत बाद में बनी, लेकिन उसमें उस पूरे परिवेश को जैसे जीवंत किया गया और अंत में ये संदेश दिया गया कि मनुष्यता का धर्म सबसे बड़ा है। ऑल इंडिया रेडियो ने पूरा प्रयास किया लगातार सद्भाव, प्रेम, सौहार्द बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम किया।
0: आज का अंक यहीं संपन्न होता है। आगामी अंक में मजबूत होते लोकतंत्र, रेडियो के विस्तार, विविध भारती की स्थापना, इन 90 वर्षों की यात्रा के प्रमुख पड़ाव होंगे। अब अनुमति दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनिया श्रृंखला की दूसरी कड़ी। वाचन स्वर देवेंद्र त्रिपाठी और निशा भारद्वाज। आलेख और प्रस्तुति पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन और प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना और निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
2: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
3: Thank you very much.
4: Thank you.
2: I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
3: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who moved from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in, deep dive into each of those aspects.
2: Absolutely. Mr. Tandon.
4: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में जी, उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टैक्स में छूट, जीएसटी का सरलीकरण, डिजिटल क्रांति, हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें,

0: पीएम स्वाधीन योजनाओं की बात करें तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया,
1: जैसे भी शरद जी ने
0: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है। और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 इयर्स विद मोर देन 25 करोड़ पीपल exiting multi-dimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
2: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye, hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya. You know, we've changed the definition because aap poverty ko pehle kaise define karte the, itne rupay roz ka. I think Niti Aayog came out with a very new and a promising definition कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, you know, on nutrition, on health, आपके पास घर नहीं है, tomorrow you get a house, you don't have a water connection, now you have a water connection. Let's not forget about the toilets, which has been, you know, sanitation has been very close to Prime Minister's heart. You know, जंगल में और खेतों में जाके you know टॉयलेट का इस्तेमाल करना, या वहां पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत, सो आई थिंक नाउ देर आर टॉयलेट्स एट, सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट नॉट दैट अ पर्सन हैज अ वेरी ह्यूज बैंक बैलेंस बट ही इज एबल टू अफोर्ड एंड लिव अ लाइफस्टाइल व्हिच एनी अदर नॉर्मल मिडिल क्लास लिव्स. सो आई थिंक दैट हैज बीन द पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट पॉवर्टी, बिकॉज दोज पीपल are financially fine, they may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities. Absolutely. Which is everybody's right and which should they should get.
2: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time, and today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana. You know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just named all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So, biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analyst, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया, और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती, क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम. और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि मुझसे जब लोग पूछते हैं, क्योंकि होता क्या जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती हैं वेलफेयर स्कीम, तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई, ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह, ऐसे ख्याल आते हैं. पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, कि आप 2014 में जब ये सरकार आई 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं. तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकॉनमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकॉनमी डबल हुई है, तो इकॉनमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे.
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम करे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है.
0: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना

0: साफ पानी पहुंचाया गया है। और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी।
0: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
2: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है।
1: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभव। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर, सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
2: बिल्कुल,
1: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, and I think a lot of people said that startup India, you know, people have been doing businesses here for times immemorial. So what is new? Yes, there was something new because startup focused on innovation, startup focused on new ideas, and that is where the youth of the country or the youth intellect of the country got activated. A lot of youngsters, and today just on startup India there are 2 lakh plus registered startups, and you know you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund
2: yes.
1: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here government became an angel.
2: Right.
1: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today I'm telling you, when from being job seekers
2: yes.
1: to being job creators, when I talk to a cross section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
2: yes.
1: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees. You borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs, you know, you'll be surprised. The participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that there are so many although I treat homemakers as
2: they
1: a very, very active GDP.
2: In fact, actually,
1: we did an analysis recently, which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
2: right.
1: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30% and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar, you also create rozgar for other people. That for me, you know, and the whole taxation system and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise banayenge, phir sarkar itne sare taxes lagati, 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, aur jab se GST 2.0 aaya hai, usne to aisa lagta hai GST ko, I mean, people have opened their arms and embraced वेस्टेड, उससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ गया है।
2: आपने जीएसटी की बात की और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार है उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क आया है, बिकॉज यू नो सम

0: सरकारी नौकरियां हो निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया, दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया गया, ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ।
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात करें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है। पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है, उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
2: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव, आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
1: डिजिटल डिवाइड, जिसको
2: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीस पीपल इन द विलेज अनुभव दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन। टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड इज प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, कैसे ये कोविड में हम करते पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती, बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ। आज भी प्रधानमंत्री जी हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है,
1: जो पिछले 12 सालों में काम किया
2: है उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे। सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली मुंबई बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाके रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं और शायद उनके एम्प्लॉयर को उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं। दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन।
1: अशोक जी आप कुछ कहना?
0: नहीं, मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है श्रमिक है उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया सुशासन और भारत के जो प्रशासनिक आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है।
1: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
2: Oh, it's done in a huge way because we pick up anything. For example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Udaan, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people ke hum sari umar mein sochta tha kab main hawai jahaz mein baithunga. Aaj mujhe lagta hai aap agar kisi bhi hawai yatra mein jaye aapko ek aam aadmi usme dikhega. Ab wo aisi luxury nahi hai. Chote chote airports ko bana kar unko connect kar dena aur chand minton mein ya ghante mein pahunch jana jiske liye aap sari raat ki journey karte the. Aapko yaad hoga Rajdhani aur Shatabdi akeli trains hua karti thi jo ki premium boli jati thi jaldi pahunchna hai. Aaj Vande Bharat leke aap kuch ghanton mein ek jagah se dusri jagah aur aise comfort पहुंच रहे हैं, which is of international level. The things we used to watch internationally के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें reclining seats होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में. So I think this government has brought luxury, which used to be called earlier, as a comfort and necessity to the people of the country.
1: And you know, that brings me to my next question, क्योंकि आप जैसे बात करें कि infrastructure में जो improvement हुआ है, be it road, रोड्स, बीट रेलवेज, बीट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे।

0: अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं 225 तक। जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
1: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
0: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
0: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। Women, you know, are the backbone of any middle class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
1: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी में, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजना, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
0: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट, एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल

0: And today women, as I said earlier, they are in the mainstream. The percentage of women who are involved in the mainstream, that is increasing. And this is, Anubha, not just happening in the towns.
1: Jee.
0: I find a lot of women, as Mr. Tandon said, that you know, jo self-help groups hain, wahan par mahilayein ikhatti hoke kuch business shuru kar rahi hain. Ministry of Cooperative ban gayi hai, jahan se bahut sari cooperative societies ke zariye mahilayein aage aa rahi hain. Aur aap agar dekhen, iska result kahan dikh raha hai Anubha, to aap dekhen ki jab bhi results aate hain kisi bhi examination ke, wahan mahila candidate sabse आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की। पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं बात को मानेंगे, पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, वो खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूँ उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूँ ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on Air. दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो अवेलेबल

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने। गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है आज अर्पना। 11:46 और 5 सेकंड हो चुके हैं, तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं दो मधुर गीतों के साथ। पहला गीत होगा मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में, संगीत जो है इसका ओपी नैयर का दिया हुआ है, फिल्म का नाम है 12 o'clock। और इसके बाद आप सुनेंगे अगला गीत जो लता जी की आवाज में होगा और इसमें संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग

11:54 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, गीत मेरे मनमीत। अगला गीत आप सुनेंगे शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध है, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत है, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में होगा ये गीत। फिल्म का नाम है चोरी चोरी।

होगा। तो बताइए फिर कि हमें पूछना है ये नहीं पूछना कि आप हमारे कौन हैं। ये पूछने की जरूरत तो हमें पड़ती ही नहीं है क्योंकि हम हमेशा आपके साथ रहते हैं और ऐसे ही दिन रात आप भी हमारा साथ

देते हैं क्योंकि ये है आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इसी गीत के साथ अर्पना को दे इजाजत एफएम गोल्ड पर। अब आप सुनेंगे समाचार। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने इसे योगासन के वैश्विक खेल मानचित्र पर महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजकों तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय संबंधी केंद्रीय सलाहकार समिति की नई दिल्ली में उच्च स्तरीय राष्ट्रीय बैठक हुई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए योजना के वांछित परिणाम के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल पर बल दिया। उन्होंने बताया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक और आकांक्षी अनुसूचित जाति समुदायों तक पहुंचने के लिए पीएम अजय योजना का दायरा विस्तारित किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर दो दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मिलेंगी। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99

बस आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन सकते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिकांत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आपने फिल्म राजपूत से किशोर कुमार की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत सुना। इन आंखों के साये में जरा आराम तो कर लेने दो, इन आंखों के साये में जरा आराम तो कर लेने दो, थक चुकी हूं दुनिया की धूप में चलते चलते।

अभी आपने हेमलता की आवाज में फिल्म आंखों के झरोके से ये गीत सुना। कहीं दूर तक चलना था, कहीं दूर तक ही चले आए। कहीं दूर तक चलना था, कहीं दूर तक ही चले आए कि इस दिखावे की दुनिया से हम बहुत परे हो गए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है ऋषिगंधा और मैं हूं आपके साथ अंजू। ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने आपको गीत सुनाया था उसे गाया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम था दूसरा आदमी।

अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में फिल्म ड्रीम गर्ल से ये गीत सुना। तुमसे मिलकर जाना कि जिंदगी क्या होती है, तुमसे मिलकर जाना कि जिंदगी क्या होती है, वरना वरना तो अंधेरे में भटकती हर राह सुनी होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है।

0: उच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले पहले विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। श्री शाह के दौरे के सिलसिले में राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय प्रशासनिक और सुरक्षा बैठक आयोजित की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। ब्रिटेन की विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पोस्वान को पराजित किया। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और लेकर आई हूं कार्यक्रम गीत सुहाने। तो रहिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में, सुनेंगे बेहद ही मधुर गीत। शुरुआत कर रही हूं फिल्म स्वामी से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

तेरी यादें, तेरी बातें बस तेरे ही फसाने हैं। तेरी यादें, तेरी बातें बस तेरे ही फसाने हैं। हाँ, कबूल करते हैं कि हम तेरे दीवाने।

मेरी नजर से ना देखना कभी खुद को, मेरी नजर से ना देखना कभी खुद को, उम्र गुजर जाएगी तुम्हें नजर उतरवाने में।

बंद आंखों से भी दिखता है उजाला तेरा, बंद आंखों से भी दिखता है उजाला तेरा, पर लोग कहते हैं कि ये सोए हैं, हम सोए कहाँ हैं, जागे हैं हम।

तेरी मदहोश नजरों के जादू का असर गहरा सा हुआ है, तेरी मदहोश नजरों के जादू का असर गहरा हुआ है कि होश में होकर भी ये दिल मुकम्मल मदहोश हुआ है।

अभी आपने कुदरत फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत सुना। न जाने कब तेरी आदत सी लग गई, हम तो यूं ही हर रोज मिला करते थे। तूने तो कभी इजहार भी ना किया, न जाने कब हम तेरे आशिक बन गए।

जमाने के हसीन नज़ारे देखो, हमारी आंखों को तो बस तुम्हारा दीदार चाहिए। बेशक दुनिया दीवानी है खूबसूरत नज़ारों की, और हमें तो बस तुम्हारा मासूम चेहरा दिखना चाहिए।

तेरी सूरत के सिवा कोई मंजर नहीं भाता है, तेरी सूरत के सिवा कोई मंजर नहीं भाता है, अब तो ख्वाबों में भी कोई दूसरा नहीं आता है। इस कदर तड़प है दिल में तुम्हें देखने की, आए ना देखूं तो उसमें भी तेरा अक्स नजर आता है।

दोस्तों भी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार दो बजकर 10 मिनट पर रात सुमेरे घर पर फिर से आपके साथ रहेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जागरूकता बढ़ाने, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन मजबूत बनाने, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI ने कंबोडिया में UPI भुगतान सुविधा आरंभ करने के लिए कंबोडिया के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक ACALEDA बैंक के साथ साझेदारी की है। भारत आने वाले कंबोडियाई नागरिक जल्द ही अपने घरेलू बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ऐप का इस्तेमाल कर पूरे भारत में लाखों UPI QR कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृह मंत्री त्रिपुरा दौरे के दौरान पुष्पबंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पोस्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है 2:11 और 10 सेकंड। मैं हूँ आपके साथ अंजू। समय बता दिया है और आगे सफर बढ़ाते हैं, कार्यक्रम लेकर आए हैं। रात सुरमई।

हम तो अजनबी थे, कब खास हो गए पता ही नहीं चला। ये इश्क है, ये इश्क है, बस इसे यूं ही हो जाने दो।

रूठेगी अगर तकदीर तो उसे भी मना ही लेंगे, रूठेगी अगर तकदीर तो उसे भी मना ही लेंगे। और वादा है तुमसे हर हाल में एक ना एक दिन तुम्हें हम अपना बना ही लेंगे।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे

0: अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यूनिंग किया है उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ अंजू, कार्यक्रम है रात सुरमई।

जुबान से जो ना कह पाए वो नजरों का फसाना है, जुबान से जो ना कह पाए वो नजरों का फसाना है, और तुम्हें ही छुपकर तुम्हें ही देखना ये इश्क का बहुत पुराना बहाना है।

रात का अंदाज कुछ मध्यम सा होने लगा है, दिल तुम्हारी यादों के समंदर में खोने लगा है। अब भी आ जाओ कि अंधेरा होने को है, तुम्हारे बिना ये दिल फिर से रोने को है।

ये जादू तो यूं ही बरकरार रहेगा क्योंकि स्टूडियो में आ चुकी हैं माधुरी हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए और जल्द ही आपसे मिलूंगी। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, ये भी आपको बताते चलें, क्योंकि माधुरी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि जल्दी से ये सीट खाली हो तो मैं बैठूं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, सुनिए समाचार, उसके बाद सुनेंगे आप 3:10 से हमराही। आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना में हुई लापरवाही की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

0: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा में रतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के दो दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो स्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for the domestic and international operations. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
3: ATF price stabilization fund mein
4: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
3: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. Mr. Vaishnaw also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip to in Odisha. Prime Minister Narendra Modi has stated that yoga is gaining tremendous popularity across the world. In a social media post, the Prime Minister said, today he will join the first World Yoga Sinner Sports Championship 2026 virtually. The championship will be held in Ahmedabad, Gujarat. Mr. Modi said, the platform has brought together yoga enthusiasts from around the world. United Kingdom Secretary of State for Foreign Commonwealth Affairs Yvette Cooper arrived in New Delhi on a two-day official visit to India. Ms. Cooper is scheduled to call on the Prime Minister Narendra Modi today. She will also meet External Affairs Minister Dr. S.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही का ये सफर लेके माधुरी है आज की रात आप सभी के साथ। नमस्कार।

चलो मीत चलें दिन और रात के सरहद के पार, जहां तुम रात को दिन कहो तो मैं मुस्कुरा दूं, और जहां सूरत से तुम्हारी दोस्ती रहे और चांद से मेरी नाराजगी। चलो मीत चलें दिन और रात के सरहद के पार।

हमसे जाओ ना बचाकर आंखें, यूं गिराओ ना उठाकर आंखें। खामोशी दूर तलक फैली है, बोलिए कुछ तो उठाकर आंखें।

खुले आसमां का पता चाहते हैं, परिंदे हैं हम और क्या चाहते हैं, उड़ेंगे हवा में खुद के परों से, उड़ानों में सारी फजा चाहते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर हमराही।

जब दिल किसी के प्यार में खो जाए तो फिर सच में जिया कहाँ लगता है। आवारा है गलियों में मैं और मेरी तन्हाई, जाएं तो कहाँ जाएं, हर मोड़ पे है रसवाई। ये फूल से चेहरे हैं, हंसते हुए गुलदस्ते, कोई भी नहीं अपना, बेगाने हैं सब रस्ते। राहें हैं तमाशाई, राही भी तमाशाई, मैं और मेरी तन्हाई, और इस तन्हाई में ये मोहब्बत का सबब।

0: रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहरे में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को चुपके से दवा मिल जाए। और इस शेर की ही तरह अगला गीत है हमारा कि कहते सुनते कब ये रात बीत जाए, कब कोई बात बन जाए, कब कोई बात बिगड़ जाए, और कब कोई बात बिगड़ के फिर समर जाए।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना।

जी हाँ, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा और कहते सुनते हमराही का ये सफर भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। रंजिश ही सही, दिल को दुखाने के लिए आ आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए।

और इसी के साथ हमराही का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना में हुई लापरवाही की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

0: दुर्घटना पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। बयान में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और भारत सरकार और लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्पबंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for the domestic and international operations. Briefing media in New Delhi Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
2: ATF price stabilization fund mein
3: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
2: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
1: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. Mr. Vaishnaw also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip in Odisha. Prime Minister Narendra Modi has stated that yoga is gaining tremendous popularity across the world. In a social media post, the Prime Minister said, today he will join the first World Yogasana Sports Championship 2026 virtually. The championship will be held in Ahmedabad, Gujarat. Mr. Modi said the platform has brought together yoga enthusiasts from around the world. United Kingdom Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs Yvette Cooper arrived in New Delhi on a 2-day official visit to India. Ms. Cooper is scheduled to call on the Prime Minister Narendra Modi today. She will also meet External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar this evening. The Ministry of External Affairs said her visit will provide an opportunity to further strengthen the India-UK Comprehensive Strategic Partnership. A total of 21 people lost their lives after a fire broke out at a guest house in the Malviya Nagar area of New Delhi yesterday. Delhi police said the deceased include 9 Indian nationals and 12 foreign nationals. The police said a case has been registered and an investigation is underway. They further informed that Lovekesh Bajaj, the owner of the building in which the fire broke out, has been detained. Meanwhile, Delhi Chief Minister's office said the lapses that culminated in the tragic fire at the guest house will be examined with

आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम अरुणिमा के साथ मैं हूं माधुरी। नमस्कार।

एक कविता की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं जो यकीनन दिल को छू लेंगी। जानती हूं जीवन मैदानों से ज्यादा विस्तृत है, हथेलियों से ज्यादा सुंदर है और धातु से ज्यादा कठोर है। जीवन का अनुवाद किसी भी भाषा में सिर्फ जीवन है। जीवन विन्यास है ऋतुओं का, नदियों का, उन रास्तों का जिनसे होकर हम काम पर जाते हैं। वो मुझे प्रिय हैं शब्दों से ज्यादा, आंसुओं से ज्यादा।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

एक और छोटी सी कविता है जिसे लिखा है नरेंद्र वर्मा ने, आप तक पहुंचा रही हूं। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 4:31 और हो गए हैं पूरे 47 सेकंड। ये सफर है अरुणिमा का।

आनंद परम की ये कुछ पंक्तियां हैं आपके लिए। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा।

दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है।

और अरुणिमा के इस आखिरी पड़ाव पर एक बहुत ही प्यारी और जानी मानी कविता आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। सोहन लाल द्विवेदी की लिखी ये कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में रुकी विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस दुर्घटना पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। बयान में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और भारत सरकार तथा लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृह मंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में उलानबतार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। 4 दिन की प्रतियोगिता में भारत की ओर से पुरुष फ्रीस्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धाओं में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. Briefing media in New Delhi Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
1: ATF price stabilization fund
3: A self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
1: Because of the stress in the sector, it will significantly mitigate.
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. Mr. Vaishnaw also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip in Orissa. Varanasi, the parliamentary constituency of Prime Minister Narendra Modi and one of the world's oldest living cities, is once again set to witness a historic international event. After successfully hosting G20 meetings, Varanasi will now host the second meeting of the BRICS Culture Working Group today and tomorrow. Representatives from 11 countries, including China, Brazil, Egypt, Ethiopia, and Indonesia, will take part in this meeting. The meeting will bring together senior diplomats, policy makers, and cultural experts. A special exhibition of Kashi's world-famous GI tagged and ODOP One District One Product products will also be organized during the meeting. Prime Minister Narendra Modi has stated that yoga is gaining tremendous popularity across the world. In a social media post, the Prime Minister said today he will join the first World Yoga Sana Sports Championship 2026 virtually. The championship will be held in Ahmedabad, Gujarat. Mr. Modi said the platform has brought together yoga enthusiasts from around the world. Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw is scheduled to arrive in Kolkata on Saturday to expedite the progress of various stalled railway projects in West Bengal. The Chief Public Relations Officer, CPRO of Eastern Railway, Shibaji Maji, informed Akashwani News that the Railway Minister will hold a high-level meeting with the state's Chief Minister Subhendu Adhikari at the Nabanna Sabhaghar. The general managers of Eastern, Southeastern, Northeast Frontier and Metro Railways will also attend the meeting. Mr. Maji stated that discussions will focus on various railway projects within the state, which is expected to further strengthen the center-state relationship regarding railway development. Furthermore, Mr.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप। रात का अंधेरा छटने लगा है, नई सुबह आने को है। आइए स्वागत करते हैं इस सुंदर सी नई सुबह का नई ऊर्जा के साथ। माधुरी का स्वीकार कीजिए, सुप्रभात।

रात चाहे कितनी भी अंधेरी या मुश्किल क्यों ना रही हो, सुबह का सूरज हमेशा नई उम्मीदों के साथ उगता है। कल जो गलतियां हुई या जो काम अधूरे रह गए उन्हें भूलकर आज एक नई शुरुआत करने का दिन है। ये सोचना कि आज का दिन मेरा है, आपको भीतर से मजबूत कर देगा।

सुबह उठते ही सबसे पहले इस बात के लिए भगवान या ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें कि आपको जीवन का एक और खूबसूरत दिन मिला है। आपके पास जो कुछ भी है, परिवार, रहने के लिए घर, सेहत, सांसें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें। कृतज्ञ रहने से मन में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक चीजें जो हैं वो हमारी ओर बढ़ती हैं।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है भोर सुहानी का। आपको पता है आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं। सुबह खुद से कहें कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं सक्षम हूं और मैं आज के दिन के हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर कर सकता हूं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं ना तो मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं और मुश्किलें भी आपके लिए आसानियां बन जाती हैं।

ये तो हम हमेशा ये कहते हैं कि मुस्कुराहट एक ऐसी जादुई दवा है जो न केवल आपके तनाव को कम करती है बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना देती है। और हम आज भी यही कहेंगे और हम ये भी कहेंगे कि सुबह उठकर आईने में देखें और खुद को एक प्यारी सी मुस्कान दे डालें। ये छोटी सी आदत आपके